धर्मशाला। तो श्रोताओं सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।
1: हमारे साथ श्री रघुनाथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 MHz पर ए तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोतो तो हां सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक ता सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हां सारे इए ही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेश्वरों तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है, मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल, फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
3: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
3: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
3: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
7: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है। जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
10: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
11: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
12: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
13: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
14: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
13: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
14: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
13: है?
14: हाँ? याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB, TB हारेगा, देश जीतेगा।
13: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
15: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
13: बात तो सही है।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने। इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने, इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: इसलिए कि शर्मा न जाए।
1: दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

चले तो दिल पे चले कटारी।

नमस्कार। 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो कंचन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। बीबीजी रामजी योजना के तहत ग्रामीण विकास कार्य की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता के लिए पोस्ट डिलीशन मॉड्यूल लॉन्च। ईरान अमेरिका सीज फायर खत्म, युद्ध शुरू। सीबीएसई स्कूलों में भर्ती होंगे 3,468 शिक्षक। चौकीदार कुक को ट्रेनिंग देगा वन विभाग। अब समाचार विस्तार से।

नवोदय विद्यालय पपरोला के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छठी में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अभिभावकों, अध्यापकों एवं पात्र विद्यार्थियों से समय रहते आवेदन करने का आग्रह करते हुए इस संबंध में विस्तृत जानकारी, पात्रता आवश्यक दस्तावेज तथा प्रवेश विवरण नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसे शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा। नई नीति राज्य में निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने तथा हिमाचल प्रदेश में व्यापार में सुगमता को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनका कहना है कि नीति को व्यापक और उद्योग अनुकूल बनाने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है। साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने उपायुक्त कार्यालय में ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण कार्य एवं आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि परियोजना के नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा रही है, ताकि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जा सकें। उन्होंने पानी, बिजली तथा सिविल कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को प्लांट की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बिजली एवं पानी की मांग का विस्तृत आकलन तैयार करने को कहा। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीबीजी रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा की ओर से जारी आदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों में मांग आधारित और सहभागी विकास कार्यों की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के होंगे विकास कार्य अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना के तहत कार्यों की पहचान कर उन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देशों पर कदम बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। विभाग ने आवास प्लस सिस्टम में एक नया पोस्टलेशन मॉड्यूल आरम्भ किया है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ बिना किसी पक्षपात के केवल वास्तविक और पात्र परिवारों तक ही पहुँचे। ईरान द्वारा होर्मुज में जहाजों पर किए गए हमलों से गुस्साए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ हुआ सीजफायर समझौता अब खत्म हो चुका है और वो अब ईरान के कोई ढील जो है वो नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि हमने मंगलवार रात ईरान पर जोरदार हमला किया और खतरनाक लोगों को निशाना बनाया। अमरीका का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। बुधवार को नाटो समिट के दौरान पूरी दुनिया को चौंकाते हुए ये ऐलान किया और नाटो पर भी नाराजगी जताई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालयों के लिए 3468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति में है। इनमें 19 श्रेणियों के 2668 पर नियमित पदों का मामला राज्य चयन आयोग हमीरपुर को भेजा जा चुका है। शिक्षा मंत्री बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उनका कहना है कि 800 अस्थायी अंग्रेजी व गणित अध्यापकों की नियुक्ति भी की जा रही है। प्रदेश में इको टूरिज्म के तहत संचालित किए जा रहे विश्राम गृहों में पर्यटकों को बेहतरीन मेजबानी के लिए बड़ी पहल की जा रही है। इसके लिए विश्राम गृहों में तैनात चौकीदार कुक को नामी होटल मैनेजमेंट संस्थान मेजबानी के लिए तैयार करेगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए इन्हें कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी के गुर सिखाए जाएंगे। बड़ी बात ये है कि इन रेस्ट हाउस में सेवाएं प्रदान करने वाले स्वयं सहायता समूहों समेत महिला व युवक मंडल सदस्यों को भी इस विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था वन विभाग ने की है। दो बिजली
सब्सिडी प्रदान करने के फैसले के बाद ई केवाईसी की राज्य भर में प्रक्रिया चल रही है। राज्य में 23 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की ई केवाईसी कर ली है, जिसमें 18 लाख से अधिक को 2 बिजली मीटर पर सब्सिडी का लाभ बिजली बोर्ड ने प्रदान किया है। हालांकि ई केवाईसी की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां भी सामने आई हैं, जिस पर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कार्रवाई कर प्रभावी कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन को नई दिशा देने के लिए हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम HPMC ने कांच की खाली बोतलों की बायबैक योजना शुरू कर दी है। योजना से अब HPMC के उत्पादों के इस्तेमाल की गई कांच की बोतलें लौटाने पर उपभोक्ताओं को नकद प्रोत्साहन मिलेगा। निगम का उद्देश्य कांच के कचरे को कम करना, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। चिकित्सा के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अगले साल राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट कंप्यूटर आधारित होगी और इसे 6 दिनों में करीब 1000 केंद्रों पर आयोजित करने की योजना है। सूत्रों की जानकारी है, किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट सबसे बड़ी परीक्षा है और इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की कि अगले साल से नीट पारंपरिक कागज कलम के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। कांगड़ा की धौलाधार पर्वत श्रृंखला में लगातार बढ़ रही ट्रैकिंग दुर्घटनाओं, ट्रैकर्स के लापता होने और बचाव अभियानों में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट हेमराज फैरवा ने आदेश जारी कर जिले के चिन्हित ट्रैकिंग रूटों पर ट्रैक शुरू करने से पहले पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 15 अक्टूबर 2026 तक प्रभावित रहेंगे। साथ ही उन्हें अपनी पूरी यात्रा योजना, संपर्क विवरण और संभावित वापसी समय भी दर्ज कराना अनिवार्य रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य ट्रैकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ किसी भी आपात स्थिति में त्वरित खोज एवं बचाव अभियान चलाना है।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
1: फेल?
0: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गांव की है। आखिर गांव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गांव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला। और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास। देश जीतेगा।
13: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
14: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
13: बात तो सही है।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोता आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते और इसी नमस्ते के साथ श्रोता कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपके साथ करेंगे ढेर सारी जानकारियाँ साझा और आपको सुनवाएंगे प्यारे प्यारे गीत। तो पूरे दो घंटे का सफ़र श्रोताओं आपके साथ रहेगा। इस दो घंटे में होंगी जानकारियां भी सांझी और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सबसे पहले करवाते हैं आप सभी का मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विचार की। श्रोताओं, कहते हैं जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी ही है, अगले पन्ने पर क्या लिखा होगा कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही, जो पल जी लें वही सही है और कोई नहीं जानता है कि आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है। हम सभी आने वाले समय से बेखबर होते हैं कि किस तरह का समय आएगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा। हम सभी के साथ इस तरह से ही होता है कि पल का भरोसा नहीं होता है। तभी कहा जाता है कि जो पल सामने है उसे जी लेना चाहिए खुशी के साथ, जाने अगले पल क्या हो जाएगा। तो श्रोताओं, इन्हीं बातों और इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता इस समय यहाँ बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज के गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मौसम की। तो श्रोताओं आज का वेदर ये बताता है कि 26 डिग्री सेल्सियस है और मौसम में ह्यूमिडिटी बनी हुई है 70%, और थोड़े से बादल भी हैं। खैर आप जानते ही हैं कि बरसातों का मौसम जो है शुरू हो चुका है। इस बरसाती मौसम में ढेर सारी सावधानियों की ज़रूरत हम सभी को रहती है और मौसम कोई भी हो बहुत सारी मुश्किलें भी हमारे सामने लेकर आता है। जहां हमें अच्छा भी लगता है वहां कुछ सावधानियां और सुरक्षा बेहद ज़रूरी होती है। तो और भी कार्यक्रम में हम आपके साथ जानकारियाँ साझा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा रुकते हैं और मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: श्रोता, इसी गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है 9:20, तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज वर्चुअल माध्यम से करेंगे शुभारंभ। प्रदेश में मॉनसून की लगातार हो रही बारिश से कुछ जिलों में जनजीवन प्रभावित, सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल ने जल जीवन मिशन के तहत करीब 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य किया हासिल। भारत नेट परियोजना के तहत शिमला जिला की 412 पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ेंगी। और कांगड़ा जिले की धौलाधार पर्वत श्रृंखला में ट्रैकिंग हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ट्रैकर्स के लिए पंजीकरण करवाना किया अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आयोजित होने वाली वंदे मातरम की यात्रा पर स्थायी प्रदर्शनी और सरदार पटेल का विजन, अखंडता, एकजुटता और संघवाद विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि खराब मौसम के चलते उपराष्ट्रपति का शिमला दौरा रद्द हुआ है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के कई हिस्सों में बीती रात से लगातार वर्षा हो रही है। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों सहित अनेक क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार वर्षा से प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। वहीं नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास ना जाने की अपील की है। बारिश के मद्देनजर सिरमौर और सोलन जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
2: जिला सिरमौर में पिछले करीब 24 घंटों से भारी बारिश का क्रम लगातार जारी है। बारिश का सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा है। जिला में करीब 4 दर्जन से अधिक सड़कें यातायात के लिए पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुकी है। वहीं भारी बारिश को देखते हुए सिरमौर जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने जिला के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन द्वारा भारी बारिश के बीच लोगों से लगातार अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: इधर मंडी जिले में भी लगातार बारिश से जनजीवन पर कुछ असर पड़ा है। अधिक ब्यौरा हमारे मंडी जिला संवाददाता से।
3: मंडी मनाली राष्ट्रीय मार्ग पर हणोगी बाजार से आगे पहाड़ी से बड़ी चट्टाने और मलबा गिरने के कारण बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो गई है। फिलहाल केवल छोटी गाड़ियों को पुलिस की निगरानी में सावधानी के साथ निकाला जा रहा है। वहीं सिराज विधानसभा क्षेत्र के कुकलाहा खड्ड में जलस्तर बढ़ने से यातायात प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों को दैनिक आवाजाही और स्वास्थ्य सेवाओं पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि जब तक सड़क संपर्क बहाल नहीं होता तब तक रोपवे से

0: रही। प्रदेश के जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार किया गया ये राज्य का पहला व्यापक संकलन है, जिसमें विभाग से संबंधित सभी प्रमुख अधिनियम, नियम, नीतियां, तकनीकी पुस्तिकाएं और प्रशासनिक परिपत्र एक ही पुस्तक में संकलित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल सुशासन को मजबूत करने, सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और जल शक्ति विभाग में पारदर्शिता को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 11 जुलाई को लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के उच्च हिमालयी चिकित्सा व जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन के कारण राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करती है, लेकिन धरातल पर सरकारी अस्पतालों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में एक प्रसूता महिला की कथित चिकित्सीय लापरवाही के बाद हुई मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि ये घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था का अत्यंत गंभीर और दुखद उदाहरण है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी संशोधित भारत नेट परियोजना के तहत शिमला जिला के सभी 12 विकास खंडों की 412 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि परियोजना के तहत इंटरनेट सेवाएं अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध रूप से उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत शिमला जिला में कुल 3691 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का प्रस्ताव है। अनुपम कश्यप ने बताया कि परियोजना के पूर्ण होने के बाद जिले की सभी पंचायतों तक उच्च गति इंटरनेट सुविधा पहुंचेगी, जिससे डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच और अधिक सुदृढ़ होगी। कांगड़ा जिले की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के विभिन्न ट्रैकिंग रूटों पर ट्रैकर्स के फंसने, लापता होने और दुर्घटनाओं के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत चिन्हित रूटों पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति या समूह को संबंधित चेक पोस्ट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
1: मानसून सीजन में हमारे ट्रैकर्स कई बार धुंध की वजह से इधर उधर रास्ता भटक जाते हैं और बाद में उनको रेस्क्यू करना पड़ता है, तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए हमने ये आदेश जारी किए हैं। हमारे 10 मेजर ट्रैकिंग रूट्स में हमारी चेक पोस्ट एस्टेब्लिश करेंगे, जो कि ट्रैकर्स का रजिस्ट्रेशन करेगी और ट्रैक रखेगी कि वो वापस लौटे हैं नहीं लौटे हैं, और ये जो आदेश हमारे सितंबर तक रहेंगे और अगर उसके बाद भी इसको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी तो हम एक्सटेंड करेंगे।
0: चंबा जिला के अनछुए पर्यटन स्थलों को देश विदेश के पर्यटकों से रूबरू कराने के लिए चंबा जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए चलो चंबा अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस अभियान की सफलता के चलते उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जिले के प्रमुख मेलों व उत्सवों में अधिक से अधिक गतिविधियों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। चलो चंबा अभियान के माध्यम से जिले में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। विस्तृत ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
2: जिला चंबा प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत का अद्भुत संगम है तथा पर्यटन की दृष्टि से यहां अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसी पर्यटन को पर्यटकों से रूबरू करवाने के लिए चलो चंबा अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का इस वर्ष उपमंडल स्तर पर भी आयोजन किया जाएगा और जिला की सभी ग्राम पंचायतों में मिंजर ध्वज फहराना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अन्य राज्य के लोगों में चंबा की समृद्ध संस्कृति की छाप छोड़ी जा सके। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, पुलिस में भर्ती होने का मौका, कल से करें ऑनलाइन।

ऑनलाइन आवेदन। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, पुरुषों के 491 और महिला वर्ग में भरे जाएंगे 243 पद। दैनिक जागरण ने खबर दी है, 9 याचिकाएं दायर करने वाले व्यक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाया 90,000 जुर्माना। हिमाचल दस्तक लिखता है, प्रदेश के स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय शुरू करने की तैयारी, सरकार को भेजा प्रस्ताव। मौसम पर पंजाब केसरी ने लिखा है, किन्नौर में बाढ़ से पुल डूबा, चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर गिरे पत्थर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज वर्चुअल माध्यम से करेंगे शुभारंभ। प्रदेश में मॉनसून की लगातार हो रही बारिश से कुछ जिलों में जनजीवन प्रभावित, सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल ने जल जीवन मिशन के तहत करीब 100% घरों तक नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य किया हासिल। भारत नेट परियोजना के तहत शिमला जिला की 412 पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ेंगी। और कांगड़ा जिला की धौलाधार पर्वत श्रृंखला में ट्रैकिंग हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ट्रैकर्स के लिए पंजीकरण करवाना किया अनिवार्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। श्रोताओं, थोड़ी सी हम समाचारों से पहले बात कर रहे थे बरसाती मौसम के बारे में। तो बरसाती मौसम में हम सभी को अपना ध्यान और ख्याल रखना पड़ता है। बारिश जहां हमारी धरा को खूबसूरत बनाती है, वहां कुछ बीमारियों को भी आमंत्रित करती है। और हम सभी जानते हैं कि ऐसे मौसम में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है और ये मच्छर जो है बीमारी फैलाते हैं। इन मच्छरों से बचाव के लिए हमें थोड़ी सी सावधानियां बरतनी बेहद ज़रूरी होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पर पानी इकट्ठा हो वहाँ पर हमें थोड़ा सा पानी का निकास कर देना चाहिए। और जैसे हम लोगों को सभी को आदत होती है कि घर पर जो भी हमारा कबाड़ का सामान होता है, टूटे टब, बाल्टियाँ, इन सभी को हम अपने घर की छत या पिछवाड़े में रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि बरसात की वजह से उसमें पानी भर जाता है और जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर बीमारियाँ होना स्वाभाविक सी बात है। तो श्रोता, इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कुछ उपाय हम भी अपना सकते हैं ताकि मच्छर ज़्यादा ना पनपे। और घर के बाहर कहीं भी नालियों में पानी इकट्ठा हो रहा हो तो उसका पूरा ही तरह से निकास करना है। साथ ही साथ कई जगहें ऐसी हैं जहां पर जो है पानी इकट्ठा भी हो जाता है। जैसे अगर हम कूलर की बात करें तो बहुत दिन का पानी उसमें हो जाता है। कूलरों का पानी हफ्ते में एक आध बार हमें साफ़ करना चाहिए। और साथ ही साथ पक्षियों को दाना देने के बर्तन को भी पूरी तरह से खाली कर देना चाहिए, क्योंकि हर तरफ पानी होता है, वहाँ से भी आजकल पक्षी पानी पी लेते हैं। जब ज़्यादा गर्मियाँ होती थी तब हम उनके लिए पानी रखते थे, लेकिन आजकल पानी इकट्ठा हो तो उसमें मच्छर पनप जाते हैं। तो श्रोताओ, थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान और ख्याल रख के हम जो है मच्छरों से अपना बचाव कर सकते हैं। और छोटी सी बात और आपसे कहना चाहते हैं कि घर के अंदर सभी जगहों में हफ्ते में एक बार मच्छर नाशक दवाई का छिड़काव ज़रूर कराएं। दवाई और इनसे हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। खासकर आजकल की बात हम श्रोताओ करें तो आजकल तो वैसे भी हर घर पर जो है जाली वाले दरवाजे लगे होते हैं, मच्छर आने की संभावना नहीं होती है। लेकिन जब आपको लगे कि मच्छर आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान और ख्याल रखें। कपड़े पूरे बाजू के पहन कर रखें ताकि मच्छर ना काट सके। खासकर अपने बच्चों को ज़रूर पूरे आस्तीन के कपड़े पहनाएं ताकि मच्छर उन्हें ना काटे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ फिर से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आ चुके हैं और थोड़ी सी बात हम और बरसात के ऊपर करेंगे, क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। सावधानियों की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे और सावधानी से गाड़ी चलाना मानसून सेफ्टी टिप्स की सबसे महत्वपूर्ण टिप में से एक है। बरसात के मौसम में सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और दृश्यता भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। तो श्रोताओं, बरसात के मौसम में इस सुरक्षा सावधानी का पालन करके हम अपने आप को दुर्घटना होने से बचा सकते हैं। जितना हो सके स्लो ड्राइविंग इन दिनों में करनी चाहिए। और विद्युत तारों की अगर हम बात करें तो मानसून के दौरान विद्युत तारों को संपर्क से बचना सबसे बेसिक सुरक्षा मानी जाती है। खुली या गिरी हुई तारें बारिश के मौसम में अत्यधिक खतरनाक हो सकती हैं। अपने परिवार को, विशेष रूप से छोटे बच्चों को, इन खतरों के बारे में शिक्षित करें और सुनिश्चित करें कि विद्युत तारों से दूर रहें। इलेक्ट्रिक उपकरणों की बात करें तो श्रोताओं, बरसात के दिनों में इलेक्ट्रिक उपकरणों को अनप्लग करना मानसून सेफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सावधानी होती है। बरसात के मौसम में अक्सर आंधी और बारिश, भारी बारिश होती है, जिससे बिजली के झटके और बिजली के खतरे हो सकते हैं। जब उपकरण प्रयोग में ना हो तो अनप्लग करके हम वोल्टेज स्पाइक्स से होने स्पार्किंग से होने वाले संभावित नुकसान से भी बच सकते हैं और खतरों को कम कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं श्रोताओं, इनका ध्यान रख के हम अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसी सुरक्षा के साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते।
0: अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं इस गीत को।
1: रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम।
0: इस गीत को हमने लिया है सड़क फिल्म से।

चलो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आइए कार्यक्रम में कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज बताया है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को 1 अप्रैल 2023 में पूरी तरह से लागू करने के लिए वित्त विभाग ने 4 मई 2023 को अधिसूचना जारी की। उन्होंने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार हमेशा से कर्मचारी हितैषी रही है तथा समय समय पर उनके कल्याण के लिए अनेक कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के जो भी कर्मचारी 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों रिक्तियों के विरुद्ध सरकारी विभागों से भर्ती हुए हैं उनको CCM रूल्स 1972 के अंतर्गत लाया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने इस फैसले से कर्मचारी जो अभी सेवारत हैं उनके NPS खाते में जमा कर्मचारी अंशदान को उनके GPF खाते में डाला जाएगा तथा उस राशि पर GPF दरों पर ब्याज लिया जाएगा। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों को थोड़ा सा देते हैं विराम और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो कार्यक्रम में श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की। आज है 10 जुलाई। 10 जुलाई का दिन जो है इतिहास के पन्नों में अपनी ख़ास अहमियत रखता है। 10 जुलाई के इतिहास की कुछ घटनाओं की बात करें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1806 में मद्रास के पास बेलोर में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा सैन्य विरोध किया था, जिसे बेलोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और 1962 की बात करें तो अमेरिका में दुनिया का पहला सक्रिय संचार उपग्रह टेलस्टार 1 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जिसने टीवी सिग्नल के प्रसारण में एक नई क्रांति ला दी थी। आज के दिन जन्म में व्यक्तियों की बात करें तो 1856 में आधुनिक युग के महान वैज्ञानिक और आविष्कार निकोला टेल्सा का जन्म हुआ था। उन्हें अल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रिक सिस्टम के विकास के लिए जाना जाता था। 1949 में भारत के प्रसिद्ध राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुनील दत्त का जन्म हुआ था। साथ ही साथ 1951 में पूर्व क्रिकेट सुनील गावस्कर का जन्म हुआ था, जिसे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज होने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो श्रोताओ ये तो थी हमारी जानकारियां भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। उससे पहले कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल। अंतराल के ठीक बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप

तो इस प्यारे से एक गीत के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वाटर लॉन्च हिमाचल प्रदेश संकल्प का विमोचन किया है और हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार किया गया ये राज्य का पहला व्यापक संकलन है, जिसमें विभाग से संबंधित सभी मुख्य अधिनियम, नियम, नीतियों, तकनीकों, पुस्तिकाएं और प्रशासनिक परिपत्र एक ही पुस्तक में संकलित किए गए हैं। इस संकलन का संपादन एवं संकलन जल शक्ति विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन, मुख्य अभियंता शिमला जोन अभियंता मुकेश हीर तथा अधीक्षक अभियंता शिमला जोन अभियंता विजय कश्यप ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये संकलन अधिकारियों, अभियंताओं, ठेकेदारों और आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ पुस्तिका साबित होगी, जिसमें जलपूर्ति, सीवरेज, सिंचाई सेवाओं और पारदर्शी जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ेगी। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को फिर से देते हैं विराम और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोतो, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज हम क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में, क्योंकि आज के दिन इसे हम मना रहे हैं और इसे क्रॉनिक डिजीज अवेयरनेस डे की आज हम बात करेंगे, यानी दीर्घकालीन रोग जागरूकता दिवस। इसे हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें श्रोताओं, तो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज़, कैंसर और हृदय रोग के बारे में लोगों को शिक्षित करना है, और साथ ही साथ इन बीमारियों से जूझ रहे लोगों की सहायता भी करनी है। और क्रॉनिक डिजीज़ का सीधे से हम बात करें तो इसका अर्थ है कि लंबे समय से चलने वाली बीमारी। ये बीमारियां होती हैं जो 3 महीने या इससे अधिक समय तक बनी रहती हैं, और साथ ही साथ जिन्हें आमतौर पर नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो श्रोताओं, इसके उद्देश्य की बात करें तो इन बीमारियों से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना और समाज में रोगियों के साथ हो रहे भेदभाव को भी कम करना है, और साथ ही साथ इस दिन की स्वास्थ्य जांच आई स्टे स्ट्रांग अभियान की भागीदारी और सहायता समूहों का समर्थन जैसी गतिविधियां भी इसमें शामिल रहती है। और भी बहुत सारी बातें श्रोताओं आपके साथ करने के लिए है, लेकिन फिलहाल अपनी बातों और जानकारियों को देते हैं विराम और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो हम कार्यक्रम में क्रॉनिक डिजीजेज की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बात करते हैं कि इन बीमारियों से किस तरह से बचा रह सकते हैं। श्रोताओं, हेल्दी खाना, हमेशा बैलेंस्ड डाइट और थोड़ा सा अपना ध्यान रख के हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ मौसमी फल, सब्जियां, साबुत अनाज और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें करके हम अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। और साथ ही साथ श्रोता, रोज़ाना व्यायाम हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 10 मिनट व्यायाम करें, ये हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ बढ़ने वाली बीमारियों को भी काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और तनाव थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि तनाव आजकल हर किसी की ज़िंदगी में है, हर कोई तनाव से जूझ रहा है। लेकिन इसे कम करने के लिए योग, मेडिटेशन और अन्य आराम देने वाले तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मानसिक और शारीरिक हेल्थ दोनों ही ठीक रहती है। रूटीन चेकअप की श्रोताओं बात करें तो समय समय पर हमें अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे बीमारियों का जल्दी पता लग जाता है और समय पर हमारा इलाज भी संभव हो सकता है। श्रोताओं, दवाइयों का सही इस्तेमाल करके डॉक्टर द्वारा बताई हुई दवाओं को रोज़ाना और सही तरीके से लें। बिना डॉक्टर की सलाह से दवाइयों में बदलाव नहीं करना चाहिए, ना ही बिना डॉक्टर की सलाह से किसी भी तरह की कोई दवाई लेनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही चलना चाहिए। और हाँ, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर हमें अवेयर रहना चाहिए। कहते हैं, अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। इंसान सही होगा तभी अपने कामकाज को सही से कर पाएगा और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी के सफ़र को भी अच्छे से, खूबसूरती से तय कर पाएगा। क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है और ये तभी तय किया जा सकता है जब हम अपने शरीर की तरफ से बिल्कुल सही होंगे। अगर शरीर सही नहीं होगा तो किसी भी काम करने को मन नहीं करता है, कहीं जाने को मन नहीं करता है, कुछ खाने पीने को मन नहीं करता है। और हम स्वस्थ रहें तो इस प्यारे से जीवन का आनंद भी हम खुशी से ले सकते हैं। तो बहुत कुछ ज़िंदगी में है देखने को, तो श्रोताओं, आप करें इंजॉय अपने ज़िंदगी को और साथ ही साथ इस इंजॉय के साथ हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। श्रोताओं, बीमारियों से बचाव और जागरूकता का अर्थ है किसी भी स्वास्थ्य समस्या के जोखिम, शुरुआत, लक्षणों और उसके बचाव के उपाय को सही जानकारी रखना। जागरूकता हमें गंभीर प्रभावों से बचाती है और इलाज पर होने वाले भारी खर्च को भी कम करती है। अब बात करें कि बीमारियां और उनके लक्षणों की, तो हृदय रोग की बात करें तो भारत में सबसे घातक बीमारियों में से एक है हृदय रोग। इसके लक्षणों की बात करें तो सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, बाएं हाथ या कंधे में दर्द होना। अब मधुमेह को हम कैसे श्रोताओं भूल सकते हैं। हर तीसरे व्यक्ति को आजकल मधुमेह की ये बीमारी है। ब्लड शुगर का बढ़ना और इसके लक्षणों की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्यास और भूख लगना, बार बार पेशाब आना और थकान महसूस होता है। इसके साथ साथ तपेदिक यानी टीबी की बात करें तो फेफड़ों को प्रभावित करने वाला संक्रमण है, ये बीमारी है। इसके लक्षणों की बात करें तो लगातार दो हफ्ते से ज़्यादा खांसी, खांसी में खून आना, वज़न कम होना, रात में पसीना आना इत्यादि इसके लक्षण होते हैं। अब कैंसर की थोड़ी सी श्रोता बात कर ले तो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करने वाला वायरस, लंबे समय तक बुखार, वजन घटना और बार बार संक्रमण होना जो है एड्स के लक्षण होते हैं। तो कैंसर की हम थोड़ी सी बात कर रहे थे तो कोशिकाओं का सामान्य विकास नहीं हो पाता है। इसके लक्षण शरीर में किसी भी तरह के असामान्य गांठ, वजन का तेज़ी से गिरना और लगातार दर्द रहता है। तो थोड़े से हम बीमारियों से बचाव की भी बात कर लेते हैं। हमेशा हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले और बाद में साबुन और पानी से हाथ धोएं। स्वच्छ भोजन करें, ताज़ा और पौष्टिक खाना खाएं, पानी हमेशा उबाल कर या शुद्ध पिए, व्यायाम रोज करें, लगभग 30 मिनट तक योग एक्सरसाइज करें। टीकाकरण की बात करें तो समय पर बच्चों का टीकाकरण करवाएं और वयस्क आवश्यकता अनुसार फ्लू तथा अन्य वैक्सीन लें। नियमित जाँच जैसे 50 वर्ष की उम्र के बाद हर साल पूर्ण शारीरिक जांच करें ताकि समय रहते हम अपना इलाज भी करवा सकें। तो श्रोताओं, ये थी हमारी जानकारियां भी और भी आपके साथ साझा की जाएंगी। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो श्रोताओं, आइए इंजॉय करते हैं इस गीत को।

0: श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। श्रोताओ, कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा तथा माननीय जिला तथा सत्र न्यायाधीश श्री चिराग भानु सिंह ने विधिवत वृद्धा पूजन के उपरांत पीपल का पौधा रोपित किया है। इस अवसर पर पीपल, अर्जुन, शीशम, आंवला, जामुन एवं रीठा सहित विभिन्न देशज प्रजातियों के 80 से ज़्यादा पौधे लगाए गए। इस अवसर पर बताया गया है कि विभाग केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है बल्कि लगाए गए पौधों की सुरक्षा, संरक्षण, नियमित देखभाल तथा जीवित रखने को भी सुनिश्चित करना उनका उद्देश्य है। अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम तथा जन भागीदारी को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियां भी और भी आपके साथ साझा की जाएंगी। फिलहाल फिर से कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत।
1: जन को सजनी पसंद नहीं, फिर क्यों ये दरवाजा बंद नहीं?
2: करू कौन जतन जल्दी हो मिलन, करू कौन जतन जल्दी हो मिलन, सुनते हो सजन छननन छननन छननन, छननन।

0: छननन छननन छन छन।
1: श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम थोड़ा सा क्रॉनिक डिजीजेज के बारे में बात कर रहे थे, जिसे हम आज मना रहे हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति श्रोता जागरूकता बेहद ज़रूरी होती है। अपनी सेहत में किसी भी गंभीर समस्या का पता लगाने के लिए पूरी तरह से जाँच करवाना आवश्यक है। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर दें। अक्सर हम लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, लेकिन हर कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। इलाज में थोड़ी सी देरी या लापरवाही से जानलेवा बीमारियां जो है हमारे शरीर को घेर लेती हैं, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना इसके लिए हमें बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ लोगों को पता ही नहीं लगता है कि उन्हें कोई बीमारी है और वे अपनी सेहत बिगड़ने तक अनभिज्ञ ही रहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बीमारियां उनके लक्षण उपचार के विकल्पों के बारे में थोड़ा सा हम शिक्षित हों, थोड़ा सा हम जागरूक हों। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता बेहद ज़रूरी है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

श्रोताओं, इस गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ और साझा करते हैं। जिला युवा सेवा तथा खेल अधिकारी कांगड़ा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि जिला युवा सेवा तथा खेल कार्यालय धर्मशाला द्वारा संचालित खेल इंडिया स्मार्ट सेंटर के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु 25 जुलाई 2026 को प्रातः 9 बजे खेल परिसर धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक पर चयन ट्रायल आयोजित किया है। उन्होंने बताया है कि चयन ट्रायल 13 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। चयन प्रक्रिया में 13 से 15 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला कांगड़ा के पात्र खिलाड़ियों को भी वीरता प्रदान की जाएगी। अंतिम चयन खेलों इंडिया योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता तथा खेल कौशल के आधार पर निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। चयन ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, खेल उपलब्धियां प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध होने और 2 नवीनीकरण पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो साथ लाने होंगे। जिला युवा खेल तथा अधिकारियों ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को खेलो इंडिया स्मार्ट सेंटर के अंतर्गत निशुल्क खेल प्रशिक्षण, स्पोर्टर्स किट तथा खेल उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियां। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ।

तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार नई बातों नई जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्ते। और साथ ही साथ इसी नमस्ते के साथ श्रोता ये कहना चाहते हैं, बहुत सारे श्रोताओं का प्यार हमें मिल रहा है, उन्हें कार्यक्रम भी पसंद आया, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और आपका प्यार इसी तरह से हमें मिलता रहे।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल, फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
2: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
3: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर

0: फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
1: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
4: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
5: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
6: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
3: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
5: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
7: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
3: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
8: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
9: और भाई शुक्ला, तेरे टीबी के क्या हाल हैं?
10: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
11: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
10: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
11: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
10: है?
11: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
12: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
13: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
12: बात तो सही है।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल, फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरे TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
16: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
17: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
16: बात तो सही है।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: अरुमा के साथ।
0: जी तो दोस्तों के साथ साथ अरुमा जी आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद रुचिका, कितना मजा आता है ना, हम बार बार मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ और आपके साथ भी जब बातें होती है तो बातें करने का जो मजा है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कई बार तो हमें समय का भी पता नहीं चलता है। और देखो, हम इतनी महत्वपूर्ण बातें हर बार लेके आते हैं कि हम खुद भी भूल जाते हैं समय कितना है और किस तरह से कम समय में अपनी बातों को अपने दोस्तों के साथ रखना है।
0: बिल्कुल सही कहा रुमा जी ने। तो दोस्तों, हम हाजिर हुए हैं कार्यक्रम लेकर, कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में। आप सभी जुड़ चुके हैं इस प्यारे से सफर में और ये सफर प्यारा तो रहता ही है और साथ साथ में थोड़ा गंभीर भी हो जाता है बीच बीच में, क्योंकि जानकारियां ऐसी होती हैं,
1: अक्सर मुद्दे ही हम गंभीर छेड़ते हैं और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो गंभीर विषयों पे बात करते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि क्यों इतनी बातों को गंभीर किया जाए कि जीवन में वैसे ही इतनी गंभीरता है सबके, तो क्यों ना हल्की फुल्की बातें करें। लेकिन हम लोग ऐसी हल्की फुल्की बातें करके सिर्फ मनोरंजन के माध्यम से अपने दोस्तों को खुश नहीं करेंगे। हमारा एक मकसद ये भी है कि हम अपने दोस्तों को मनोरंजन के साथ साथ जागरूक भी करेंगे और ये जागरूकता आज के समय में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आए दिन हमारे सामने देखो ना रुचिका, कई प्रकार की चीजें हो जाती है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि बाद में हमें लगता है कि अच्छा, हमें इस चीज का नॉलेज होता तो शायद इस चीज से हम बच सकते थे। तो हमारा तो मेन मकसद यही रहता है कि हम मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इसी तरह से मिलकर भरते रहें अपने दोस्तों के साथ मेरे हौसलों की उड़ान।
0: जी बिल्कुल, और दोस्तों की बात कर रहे हैं तो सच में रुमा जी, जब मैं भी आपसे मिलती हूँ ना तो एक अलग ही उत्साह मेरे मन में आ जाता है कि नहीं, आज तो कुछ जरूर मतलब बहुत ही अच्छा जानने के लिए मिलेगा और अच्छी जानकारियाँ मेरे तक तो पहुँचेंगी ही, पर साथ ही साथ हमारे दोस्तों तक भी पहुँचेंगी, क्योंकि यही तो एक हमारे लिए जरिया है, साधन है।
1: बिल्कुल, और
0: अपडेट रहने का,
1: अपडेट रहना बहुत जरूरी है और हमारे पिटारे में बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं और हमारा पिटारा भी बार बार उछल उछल के खुलने को तैयार रहता है कि इन जानकारियों को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ साझा करूं। तो हम आज फिर आ गए हैं लेकर आपके लिए एक बहुत ही नायाब उम्दा जानकारी जो हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं काम आती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में।
0: जी तो रुमा जी, अब आपने बता तो दिया है हमारे दोस्तों को कि घरेलू हिंसा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, पर आपको क्या लगता है कि आज के समय में भी घरेलू हिंसा देखने को मिलती है?
1: देखो रुचिका, जैसे जैसे हमारे जीवन में व्यस्तता बढ़ती गई है ना, हमारी उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हम लोगों में जो सब्र जैसी चीज होती है ना और सहनशीलता, वो बिल्कुल कम हो गई है। और ऐसे में हर घर में कोई ना कोई मुद्दा इस तरह का उठ जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, देखो थोड़ा बहुत हर घर में चलता है। लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसे भी गंभीर मामले आ जाते हैं कि घरेलू हिंसा की अगर आप बात करें, आपने कहा कि आज भी घरेलू हिंसा होती है, तो आंकड़े तो ये कहते हैं कि आज कल भी लगभग 100 में से 70% महिलाएं जो है वो घरेलू हिंसा का शिकार होती है। उनमें से पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, अपने काम पे जो अपने पैरों पे खड़ी महिलाएं हैं वो भी महिला जो है घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती है। और इससे अलग अगर हम बात करें, जो वो महिलाएं जो सिर्फ घरों में रहती हैं, उनके जो आंकड़े हैं वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। घरों में रहने वाली महिलाएं जो है वो अपने आप को सिर्फ एक घरेलू कर्मचारी के तौर पर या काम वाली के तौर पर ही कंसिडर करने को कई जगह पे उनको रखा गया है। उनकी जो एक इमेज है वो इसी तरह की है कि महिला है और घर का काम काज संभालने तक ही सीमित है, और अगर वो उस चीज में कहीं नाकाम हो जाती है तो उसको कई तरह की घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। और इसमें सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी कि घरेलू हिंसा में मारपीट ही होती है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से भी उनको प्रताड़ित किया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर है और छोटी छोटी चीजों के लिए वो जब अपने पति पे या परिवार पे निर्भर होती है तब भी उनको ताहने उल्हाने सुनने को पड़ते हैं और इस तरह से वो मानसिक हिंसा का भी शिकार हो रही है। तो घरेलू हिंसा तो हर कहीं है आजकल।
0: बिल्कुल सही कहा रुमा जी आपने, और एक बात अभी आपने ये कही कि जैसे कि महिला को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मतलब घर तक ही सीमित हूँ, और मेरा जो एक बोलते हैं ना कि टैग लाइन ही होती है कि महिला है तो महिला का काम है खाना बनाना, चूल्हा चौंका और ये झाड़ू पोछा वगैरह, ये सिर्फ लड़कियों का या महिलाओं का काम है। पर अक्सर ये सोच मुझे लगता है अब तो कुछ हद तक बदली हुई है, पर ये सोच जन्म कहाँ से लेती है? अक्सर जब हम बचपन में जैसे ही बेटियां जन्म लेती हैं, तो उन्हें तभी से हम ये सुनाने लग जाते हैं कि तुम बेटी हो और तुम्हें ये सब करना है, तुम्हें सीखना है।
1: बच्चों को यही सिखाते आए हैं, लड़कियां हैं तो उनको लड़कियों की तरह ही हम उनको बड़ा कर रहे हैं, उनको वो सिखाया जा रहा है जो लड़कियों के लिए बेसिक बहुत ही जरूरी है, घर का काम, बाहर का काम, हर एक चीज में। लेकिन यहीं पे हम एक फर्क अपने बच्चों के साथ डालना शुरू कर देते हैं। जो हमारे घर में मेल चाइल्ड होता है, हम उसके साथ वो बर्ताव अभी भी नहीं करते हैं जो हम अपनी बेटियों के साथ करते हैं। तो यहीं से ये जो है हिंसा जैसी जो चीजें हैं, वो यहीं से ये जो गैप हम लोगों ने रखा है, यही एक बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा के मामलों में, जो आज भी बढ़ोतरी हो रही है।
0: बिल्कुल, और बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो बच्चा जब छोटा होता है, जब आप अपने घर में अपनी बेटी के साथ वो बिहेव कर रहे हैं, भेदभाव वाली नजरों से उसको देख रहे हैं, एक कहते हैं ना, वैसे भी बोलते हैं, एक मतलब कि महिला की दुश्मन एक महिला ही बनती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ही सुना होता है, सहयोग नहीं करते हैं।
0: देखिए, जब कि एक लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है, तो ऐसे हम ऐसा लगता है जैसे कि उनकी सासू माँ है जो भी है, तो जैसे ही वो कंसीव करते हैं तो उन्हें ये टेंशन हो जाती है कि लड़की होगी या लड़का होगा, तो वहां से वो एक सोच पनपनी शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल, जो जेंडर गैप हम लोगों के बीच में है, जब तक ये जेंडर गैप नहीं भरेगा, इस तरह के हिंसा के जो मामले हैं वो हमारे समाज से खत्म नहीं हो सकते हैं। और ये चीज भले ही आज हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, हम सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़के और लड़की में अंतर किया जाता है। आज भी देखिए, परिवार से छुपकर लोग, समाज से छुपकर झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाके कई तरह के उपचार हम करते हैं लड़का पाने के लिए, और ये लड़के की जो चाह है, कई बार हमारी महिलाएं इस वजह से भी प्रताड़ित होती हैं कि वो एक बेटे को जन्म नहीं दे पाई। और इस तरह के कई सारे उदाहरण हैं जो घरेलू हिंसा के हमारे सामने आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम भी हिंसा कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, मनोरंजन की ओर से हमारा थोड़ा सा ध्यान जा रहा है, क्योंकि मुद्दे जब हम गंभीर ले लेते हैं तो हम पहले ही बोल चुके थे हम गंभीर हो जाते हैं। तो रुचि का एक प्यारा सा गीत अगर आप हमारे दोस्तों को सुनाएं तो मुझे लगता है माहौल थोड़ा हल्का हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम में गीत संगीत ना हो तो फिर वो कार्यक्रम ही क्या है। तो आइए आप सभी को लेकर चलते हैं इस खूबसूरत से गीत की तरफ, उसके बाद हम वापस आते हैं अपनी इन उड़ानों के साथ।

0: दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में। और कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। और इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी तो आइए रूमा जी, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपने दोस्तों को थोड़ा सा अब मनोरंजन से निकाल के लेकर चलते हैं जीवन के संघर्षों की ओर।
1: बिल्कुल। और रुचिका जी, हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा की
0: जी।
1: तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि घरेलू हिंसा है क्या।
0: है क्या? बिल्कुल।
1: घर से ही, घर में जितने भी व्यक्ति सदस्य रहते हैं उनका आचरण किस तरह का आपके साथ है। देखिए, हम लोग जिस समाज में रहते हैं हम वहाँ पे यू उम्मीद करते हैं कि सब मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियों के साथ उनको एक्सेप्ट करें, जो भी हमारे पार्टनर के साथ है, जो भी जिस तरह की भी उसकी व्यक्तित्व है, हम उसी के साथ उसको सहजता से स्वीकार कर ले। लेकिन घरेलू हिंसा के मामले में क्या आता है कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो पति है, सास ससुर है, परिवार के बाकी सदस्य हैं, उनका आचरण किसी भी महिला के साथ किस प्रकार से है। अगर वो मारपीट करते हैं, उसको ताने उलाहने देते हैं, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को, उसकी शक्ल सूरत को, कई बार आपने देखा होता है कि इस तरह की भी ताने किए जाते हैं रंग रूप को लेके, और भी कई प्रकार के मारपीट, जैसे कई बार ऐसे भी हमारे सामने आता है कि मारपीट से किसी महिला का कोई अंग जो है वो बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं, अपंगता तक आ जाती है, किसी महिला की आपने सुना होगा मौत तक हो जाती है। तो हम किस तरह का आचरण हम अपने परिवार के उस सदस्य के साथ कर रहे हैं, अगर उसके साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसको ताने उलाने दे रहे हैं, तो ये सभी घरेलू हिंसा में आता है। और घरेलू हिंसा को जो है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अभिशाप होता है, क्योंकि आप कहते हैं ना एक महिला के ऊपर जो होती है दो परिवारों को संभालने की जिम्मेदारी होती है। इसी के साथ साथ समाज निर्माण में भी एक महिला का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन जब एक महिला के साथ मारपीट होती है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसको अपशब्द बोले जाते हैं, उसकी किसी भी कमी को बार बार उजागर करके उसके सामने लाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो वो महिला अपने आप में अंदर ही अंदर घुटती है, अपने परिवार को अपना वो उस जिम्मेदारी के साथ अपने उस परिवार को बनी ही संभाल पाती है। क्योंकि हर वक्त जब महिला किसी मानसिक तनाव में रहेगी या उसका स्वास्थ्य गिर जाएगा इन चीजों की वजह से, तो अपने परिवार और बच्चों को वो उतना समय और उतना गहराई के साथ वो नहीं संभाल पाएगी हर चीजों को। तो घरेलू हिंसा अपने आप में एक बहुत ही तकलीफ देह है। और ये सभी अभी भी हमें शर्म जैसी महसूस होती है जब हम देखते हैं कि आज भी हमारे समाज में इस तरह के कृत्य होते हैं, जहां बहू बेटियों को मारा जाता है, उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि बेटा पैदा नहीं कर पाई है उसके लिए उनको ताने दिए जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो घरेलू हिंसा में आती है।
0: जी बिल्कुल। और अभी आपने कहा ना कि जैसे रंग रूप को लेकर जो है बहुत सी महिलाओं को ऐसे ताने भी सुनाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी कि अक्सर ऐसा भी होता है कुछ केसेस में कि क्या होता है कि जैसे ही कई बार होता है ना कि अब वैसे भी शादियां बहुत से कम हो गई हैं, जैसे लड़कों को लड़कियां मिलना मुश्किल हो गई है, लड़कियों को लड़के मिलना मुश्किल हो गए, तो पता क्या होता है कि जब शादी नहीं हो रही होती है, किसी भी लड़के की बात करूं मैं फिलहाल, यहां हम महिला घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं, तो जहां शादी नहीं हो रही होती है तो वो उस समय जो है उन्हें एक तरह से मजबूरी सी, मतलब घर वालों के लिए वो समाज के तानों से बचने के लिए शादी जरूरी हो जाती है, तो लड़के के लिए भी वो एक तरह से फॉर्मेलिटी बन जाती है।
1: जी जी।
0: तो वो उस समय ये नहीं देखते हैं कि रंग रूप कैसा है, लड़की कैसे है, काम क्या है, क्या है, जो भी है कुछ भी, मतलब उसके गुण जो होने सभी अच्छे लगते हैं।
1: जी।
0: पर जैसे ही शादी हो जाती है तो फिर वो लड़की को ताने मारने शुरू हो जाते हैं कि नहीं पता नहीं उस समय तो बड़ी अच्छी लग रही थी, अब ऐसे लग रही है, अब वैसे है, हमारी तो सब मतलब ये काम ऐसे नहीं करती है, वैसे नहीं करती, मतलब कि उस सिचुएशन को इतना टॉक्सिक जैसे बना देते हैं एक महिला के लिए, इतना मुश्किल होगा वो सब बर्दाश्त।
1: और आप देखिए किसी भी विवाह बंधन में जब स्त्री और पुरुष बनते हैं तो हमारी जो संस्कृति है वो ये कहती है कि दोनों का जो सहयोग है परिवार को या घर को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे ही विवाह संपन्न हो जाते हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि सभी पुरुष ऐसा करते हैं,
0: कुछ कुछ केसेस
1: ज्यादातर मामलों में घर की जिम्मेदारी का जो मेडल है वो महिला के गले में डाल दिया जाता है, वही उसको संभालेगी। अगर उसका पति शराब पीता है तब भी उसी की गलती मानी जाती है, चाहे वो पहले से ही उसमें कितने ऐब है। लेकिन जैसे ही, और हमारे समाज की एक और भी धारणा है कि अगर आपका बच्चा निकम्मा है, वो काम कुछ नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, शराब पीता है या गलत संगति में पड़ गया, उसको सही संगति में लाना है तो उसकी शादी कर दो। और ये जो चीजें हैं ये घरेलू हिंसा को बढ़ावा
0: देते हैं,
1: क्योंकि बिना सोचे समझे हम अपने बच्चे को हम नहीं संभाल पाए, उसको एक अनजान लड़की को हम सौंप देते हैं कि वो उसकी गलतियों को सुधारेगी। तो
0: और फिर भी अगर सिचुएशन सही, ऑब्वियसली बात है, कोई अगर बचपन से बिगड़ा हुआ है तो वो एकदम से कैसे ही सुधर जाएगा। होता है कुछ केसेस में कि किसी के लिए जो मतलब लाइफ पार्टनर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको लेकर वो मतलब इतने एक तरह से बोल सकते हैं उनके साथ इतने अटैच होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं कि वो सुधर भी जाते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि बहुत सभी केसेस में,
1: लेकिन देखिए ना, जिसको हम खुद नहीं सुधार पाए उसका जिम्मा हम ये मतलब हम यहाँ लड़की के ऊपर डालेंगे।
0: यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पेरेंट्स का ये उम्मीदें लगाना,
1: जी
0: ये यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेना कि हम तो नहीं कर पाए और कोई लड़की आएगी तो वो इसे संभाल लेगी, वो इसे सुधार लेगी।
1: बिल्कुल,
0: वहाँ पर वो गलत,
1: यही बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा का, क्योंकि यहीं से घरेलू हिंसा शुरू हो जाती है। हम अपनी उम्मीदों के, जब हमारी उम्मीदों के अनुसार कुछ नहीं होता
0: नहीं
1: है तो हम प्रताड़ित करते हैं उस लड़की को। और इस तरह के कई किस्से जब हमारे सामने आते हैं, आप अगर फैमिली कोर्ट की ओर रुख करें कभी तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लड़की को इसलिए उसको प्रताड़ित किया जाता है कि वो समय पर पति के लिए खाना नहीं बनाती है, उसने कपड़े नहीं धोए, या उसने फलां काम नहीं किया, या उसने ये नहीं किया, वो बच्चों की केयर नहीं करती है
0: जी।
1: और इस तरह के, और साथ ही साथ दहेज उत्पीड़न के बहुत सारे मामले हमारे सामने आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो घरेलू हिंसा को उकसा रही है, उससे घरेलू हिंसा के मामले जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है वो हमेशा ही पीड़ित रहता है, क्योंकि परिवार के किसी भी सदस्य का सहयोग उसको नहीं मिलता है। अगर पति पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है तो ससुराल वाले उसको रोकते नहीं है, उसको समझाते नहीं है, और इसी तरह से और भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे सामने आती है।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी, परिवार का सहयोग होना ही तो हमारे लिए, क्योंकि एक लड़की अपने पूरे परिवार को छोड़कर 23-24 साल जिस घर में उन्होंने बिताए हैं उस माहौल को एकदम से छोड़कर जाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। तो वो वहाँ पर जा रही है तो उसे ऑब्वियसली सहयोग की जरूरत होती है, और जैसे कि आपने कहा कि पति उसे मार रहा है, पीट रहा है, तो वहाँ पर पेरेंट्स जो है वो कुछ नहीं बोलते, और ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर पेरेंट्स

0: 291 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे हौसलों की उड़ान अपने आरजे दोस्त रुचिका और रूमा के साथ। जी तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को भी बढ़ाते हैं कार्यक्रम में आगे।
1: और रुचिका, हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा की।
0: जी
1: तो घरेलू हिंसा भी कई प्रकार की है, इसको हम 4 प्रकार से तो डिफाइन कर ही सकते हैं।
0: जी
1: जैसे पहला हमने कहा मारपीट करना। व्यक्ति परिवार का कोई भी सदस्य है जो महिला के साथ मारपीट कर रहा है, उसको बिना वजह के टॉर्चर कर रहा है। इसके साथ साथ महिला को खाना नहीं देना। कई जगह ऐसा भी होता है कि घर का पूरा काम करेगी लेकिन उसको खाना तक नसीब नहीं होता है, उसको खाना नहीं दिया जाएगा। अगर उसको स्वास्थ्य की जरूरत है तो उसको मेडिकेशन के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाएगा, नॉर्मली उसका घर में रख के सामान्य उपचार किया जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि उस महिला को किसी भी पड़ोसी से या परिवार के दूसरे सदस्य से बात तक करने की इजाजत नहीं होती है, उनसे फोन छीन लिए जाते हैं, वो अपने मायके में बात नहीं कर सकती है। तो इस तरह से दूसरी हम बात करेंगे आर्थिक जो उत्पीड़न है वो भी हमारी बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें जो हैं वो अपने परिवार के सदस्यों पर अपने पति की इनकम पर निर्भर रहती हैं, तो उनको जानबूझकर उनको खर्चा नहीं दिया जाता है, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है। ऐसे में वो महिलाएं छोटी छोटी चीजों के लिए भी अपने परिवार के सदस्यों पर अपने पति या सास ससुर पर निर्भर रहती हैं, या फिर उनको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने मायके वालों से मदद मांगनी पड़ती है। इसके साथ साथ अगर हम मैं बात करूं तो मानसिक जो तनाव है, जो मानसिक उत्पीड़न है, ये तो बहुत ही जहर की तरह काम करता है किसी भी महिला के जीवन में।
0: जी।
1: क्योंकि देखो रुचिका, जब हम शारीरिक या आर्थिक रूप से अगर हम संपन्न हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें छोटी छोटी बातों के लिए उलाहने दिए जा रहे हैं, हमारे शारीरिक किसी बनावट को लेके या किसी और वजह से हमें तंग किया जा रहा है, तो ये इतना बड़ा टॉर्चर होता है कि महिला किसी से बोल नहीं पाती है और अंदर ही अंदर वो कूदती रहती है। तो इस तरह के बहुत सारे बातें हैं जो घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती हैं और महिलाएं कई बार अपना आत्म संतुलन तक खो बैठती हैं। और बहुत सारी महिलाएं हैं, आपने देखा होगा कि हम लोगों को शुरू से सिखाया जाता है कि आपका जो ससुराल है वही सब कुछ है, यहाँ महिलाओं के साथ मारपीट भी होती है, उनको ताने भी दिए जाते हैं, तो आपने झेलना है ये सब चीज और मायके वापस नहीं आना है, क्योंकि कई बार मायके वालों का सहयोग भी हमारी बहनों को नहीं
0: मिल पाता है।
1: तो ऐसे में वो अंदर ही अंदर घुटती जाती है। तो इन चीजों से हमें अपनी बहनों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर महिला को पता है कि उसके हक में कोई कानून है, कोई सरकार उसके लिए उसकी मदद कर रही है, तो जानबूझ के वो इस तरह की मुसीबत को नहीं झेलेगी और उससे बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेगी।
0: जी बिल्कुल। और अभी हमें फिलहाल अपनी इस गंभीर बातचीत से थोड़ा सा निकलने के लिए रास्ता ढूंढना है।
1: बिल्कुल। और ये रास्ता जाता है हमारे संगीत की लहरियों से।
0: तो आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आप सभी इंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: 291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे हौसलों की उड़ान अपनी आरजे दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को भी बढ़ाते हैं कार्यक्रम में आगे। तो रूमा जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा की, मुझे ये लगता है कि एक ऐसा केस भी होता है, मैक्सिमम आज के डेट में आपको ये देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, तो वहाँ पर भी घरेलू हिंसा की शिकार जो है एक महिला, जो घर पर घर में जो एक वाइफ के नाम पे वो घर में लेके जाते हैं एक महिला को, तो उसके साथ वो एक तरह से उत्पीड़न, उसके साथ गलत दुर्व्यवहार, बोलते हैं ना कि जब प्यार वाली जो फीलिंग है वहाँ से कट जाती है तो फिर हमें नहीं समझ में आता है कि हम उनसे किस बिहेव में बात कर रहे हैं।
1: जी जी।
0: गुस्सा कहीं और का है, हम निकाल कहीं और रहे हैं।
1: बिल्कुल। और पुरुषों के पास एक, हमारे पुरुष दोस्त नाराज ना हो जाए, बट एक अपने आप को एक राइट समझते हैं कि घर में मेरी पत्नी है तो हम उसके साथ अपने दिन भर का तनाव, चाहे वो काम का तनाव हो या अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से कोई तनाव हो या किसी भी आर्थिक परेशानी की वजह से तनाव हो, वो आ जाके अपना जो तनाव है वो अपनी पत्नी के ऊपर ही उड़ेल देते हैं। और जो गलत बात है, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर हम अगर अपने पार्टनर के साथ हम करते हैं तो जो कहते हैं ना गृहस्थी की गाड़ी है जो दो पहियों के साथ मिलके चलती है, एक भी पहिया अगर डावाडोल हो जाता है तो वो गृहस्थी की जो गाड़ी है वो अपनी पटरी पे कभी नहीं लौटती है। और इसका जो असर है वो हमारे जीवन में हमारे बच्चों पर भी पड़ता है, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग और बाकी के जो और भी सदस्य होते हैं वो भी इन चीजों को झेलते
0: हैं। बिल्कुल। क्योंकि मतलब कि अब पहले का समय होता था कि बिना फेस देखे शादियां हो जाती थी, चेहरा भी नहीं देखने को मिलता, शादी वाले दिन चेहरा
1: आप देखिए कि वो शादियां बहुत अच्छे से
0: निभ रही है और निभी है आज तक।
1: बिल्कुल।
0: और अब जो है, अभी बच्चे 14-15 साल के हो नहीं रहे हैं कि बस उनको एक तरह से लव अफेक्शन जो है वो एकदम से हो जा रही है, लव अट्रैक्शन जो है कहीं ना कहीं एक शौक सा बन गया है, तो उसी तरह से बच्चों में तो खैर है ही है पर जो शादीशुदा लोग हैं उनमें भी ये बहुत
1: आजकल जाने कहा ना, हम लोगों को आदत हो गई है यूज एंड थ्रो की।
0: बिल्कुल।
1: हम लोगों को आजकल इस तरह के, हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने में भी शर्म नहीं आती है, हम लिव इन रिलेशन में रहने से भी गुरेज नहीं करते हैं। तो इस तरह की कई चीजें हैं, हम एक पत्नी के होते हुए हम कई तरह के अफेयर्स रख लेते हैं और महिलाओं में भी इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं, वो भी पति के होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रही हैं या उनके भी कहीं ना कहीं किसी अनैतिक संबंधों में भी हम जुड़ रहे हैं। तो ये चीजें जो है हमारे समाज को पतन की ओर तो लेके जा ही रही है, साथ ही साथ हमारा जो मानसिक जो विकास है वो भी अपनी धुरी से थोड़ा पीछे हट गया है। तो इन चीजों के ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है, अपने समाज में एक तरह की जानकारी और जागरूकता फैलाने की जरूरत हमें है ताकि हम इन चीजों से हटकर अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें और हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिए हैं, उन मूल्यों को हम बना के रख सकें।
0: बिल्कुल। तो अब मैं ये हम ये बात कर लेते हैं रूमा जी कि अक्सर जब महिलाओं के साथ या किसी के भी साथ बात करें, जाते जाते हम ये सभी को ले लेते हैं, सिर्फ किसी एक पहलू पे हम बेस नहीं रहते हैं, तो जैसे किसी के भी साथ ये घरेलू हिंसा वाला व्यवहार जो है हो रहा है तो वो कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे खुद की मदद कर सकते हैं और कानून की तरफ से उन्हें किस तरह से मदद मिल सकती है?
1: देखिए रुचिका जी, समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी है। और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था जो इम्प्लीमेंट हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को और उसके बाद हर कोर्ट में भी, थानों में भी और कोर्ट्स में भी इसके ऊपर काम होता है। अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, मारपीट हो रही है, उसको जबरन किसी काम के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसके साथ यौन दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे उसका पति ही उसके साथ जबरदस्ती उसको यौन उत्पीड़न कर रहा है या किसी भी प्रकार दहेज या अन्य उत्पीड़न अगर उसके साथ हो रहा है, तो महिला अपने नजदीकी थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। इसके साथ साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में डोमेस्टिक वायलेंस सेल है जहाँ पे महिलाओं को प्रोटेक्शन ऑफिसर्स दिए गए हैं, उनके माध्यम से वो अपना मुकदमा जो है वो कोर्ट में दायर कर सकती है। हैं और अगर किसी के खिलाफ घरेलू हिंसा का ये मामला साबित हो जाता है तो कोर्ट सजा देता है। अगर महिला के साथ मारपीट हुई है तो थाने में FIR करवा सकती है और इसके साथ 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को अपनी हेल्प के लिए बुला सकती है।
0: जी बिल्कुल, तो आपने ये तो बता दिया कि हमारे जो भी जिस किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार हो खासकर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा वाला तो वो कैसे अपनी हेल्प ले सकते हैं। और फिलहाल हमारे दोस्तों को अगर कार्यक्रम से जुड़े कोई सुझाव देने हैं या कोई उनके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है इस विषय से संबंधित तो वो कैसे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, आप जाते जाते ये भी बता दीजिए।
1: बिल्कुल रुचिका, अगर हमारे दोस्त चाहते हैं हमसे इस विषय के संदर्भ में कोई भी जानकारी तो वो हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फोन के माध्यम से। हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, हमारा मोबाइल नंबर है 9418431223। आप कभी भी इस नंबर से किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं या फिर WhatsApp भी आप हमें कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी या जो भी जानकारी होगी हम आपकी उस जिज्ञासा को शांत करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे।
0: जी तो रुमा जी, मुझे लगता है कि अब बहुत सारा समय हो गया है हमारे दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए और अब समय हो गया है अपने दोस्तों से अलविदा लेने का।
1: जी
0: तो फिर होगी दोस्तों आप सभी के साथ मुलाकात। आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे मेरे हौसलों की उड़ान अपनी आचे दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी तो इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठे और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पहाड़ और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है।

मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा रहता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पाट और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है।

0: सरकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहाँ के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियाँ की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफ़ी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फ़र्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफ़ी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुँचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरे TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB। TB हारेगा, देश जीतेगा।
16: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
17: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
16: बात तो सही है।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हाँ श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।

0: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
1: फेल?
0: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गांव की है। आखिर गांव भी तो हम सबका घर है। क्यों? अब तो गांव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
2: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
3: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला, और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
4: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
7: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
8: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
9: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
6: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
8: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
10: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
6: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
11: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
12: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
13: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
14: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
13: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
14: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
13: है?
14: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
13: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
15: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
13: बात तो सही है।

नमस्ते नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेके माटी दी महक तशतो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहा सारे दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। कने तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दा जेड़ा इंतजार है से करा दे होने न, ता जरूर इंतजार दी जेड़ा घड़ी है से तुहां वास्ते खत्म होंदी है। कने हर दिन अहां वास्ते खास होंदा, अजकना जेड़ा दिन है से तुहां जरूर इंजॉय करा दे होने न, कने अपने अपने जेड़ा कामकार है न तिना भी करा दे होने न, ता कामकार भी करा। कने कार्यक्रम दी शुरुआत जेड़े से अहां करी दी होए, इसी शुरुआत करने हाँ पहले अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से करते न, फिर ही बाकी दियाँ जेड़ा गल्ला न से तुहां तक पहुँचाते न, क्योंकि शुरुआत अगर एक प्यारे दे गीत करना हुई तो कार्यक्रम दा जेड़ा सफ़र है से और भी सुहाना लगदा और भी प्यारा जेड़ा है से लगता है। तो ज़रूर हाँ अपने सफ़र दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत करने करनी है, प्यारी दी शुरुआत करने करनी है, क्योंकि हर कुसी जो इंतज़ार जेड़ा है से जरूर रहिंदा है कि कालू दी हाँ गीत संगीत जेड़ा है से सुन देन, गीत संगीत भी जरूर तुहां तक पहुँचाना है, कने जेड़ा गलबात है सभी जरूर तुहां तक पहुँचानी है। तो अपनी गलबात जो इतनी रोक देन, कने तुहां जो पहले गीत यो लेकर चल देन या कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से कर देन, तो तुम सारी इंजॉय करा।

0: ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਇਸੀ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਆ ਗੀਤ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਕਰਨੇ ਕਰੀ ਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਰ ਦਿਨ ਤਿਨਾ ਕਰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ
1: वंदे मातरम यह पत्र शुरू हुआ और इन दो समाचार पत्र
0: हेलो
2: नमस्कार मैडम जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
2: हां जी मैडम जी तुहां
0: जी आहां भी ठीक ठाक है जी तुहां कुथों ते बोला दी कने तुहांदा नाम की है जी
2: मैडम बड़े टाइम बाद फोन करता हूँ धर्मशाला बोले विजय कुमार
0: जी विजय जी क्या हाल चाल है धर्मशाला आने आंदी
2: मैडम जी ठीक ही है ना चालो पर बदल ही है
0: जी बदल ही है
2: हाँ जी
0: क्या काम कार छेड़े तो हाँ आज कना जेड़ा दिन नए से किस प्रकार चल लिया
2: मैडम बस सुन रोटी खाने टाइम हो या कने
0: जी कने रेडियो गुंजन धर्मशाला भी सुना देना जी
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी ता और नोई ताजी धर्मशाला दी
2: बस ठीक है मैडम जी
0: जी ठीक ही चाहिए ना मौसम भी कुथी ना कुथी कदी धूप लगाई दे दा कदी बरखा बरसात जिड़े से उस तरीके ने बरा दी भी है नी भी बरा दी ना जी
2: हाँ जी हाँ जी बरसात कुछ है बड़ी ठंडी है चलियो
0: जी जी कई जगह ता अली पानी भी नहीं है ना जी
2: हाँ जी हाँ जी
0: कुथी कुथी जिड़ा किसान तिना वास्ते ता पानी भी नहीं है ना जी से ता फसी हो जी जी तो विजय जी आज तू हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी अच्छा रुण झुणवा जेड़ा गीत ऐसे सुनना है तो हाँ जी जरूर तो हंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहा तक पहुँचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशो तो मौसम दी ओर अगर हाँ अपनी नज़र दौड़ाते न कि मौसम जड़े से किस प्रकार रहने वाला है या अधिकतम तापमान जड़े से किस प्रकार है तो अज का जड़ा अधिकतम तापमान है से वह 25 डिग्री सेल्सियस कने जड़ा न्यूनतम तापमान है से वह 21 डिग्री सेल्सियस कने मौसम जड़े से थोड़ा ठंडक आला है कने थोड़ा सुहावना जड़े से बने है कने मौसम कुथी ना कुथी अपनी जड़ा करवट है से जरूर बदलता है कने बरसात का मौसम है तो जरूर अपना जड़ा ख्याल है सभी तुहां रखना है कने अगले जड़ा श्रोता न तिना कने यहाँ करते न गल बात हेलो
3: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
3: नमस्ते जी
0: जी
3: कैसे हो हाल चाल आपका
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक

0: हांबोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहा सारे सुनिया ए प्यारा दया गीत प्यारी देई फरमाइश ए फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए धर्मशाला ते कने तिना दा नाव है विजय जी तो जरूर तिना तक अहाँ ये गीत ए फरमाइश पहुँचाई कने फिर ते अहाँ वापिस अपनी जेड़ा गल बात है से लेकर तुहां तक हाजिर हुई न कने जितने भी जेड़ा श्रोता न या जेड़ा अहंदे लिस्टन से अहां जो लाइव भी दिखा दे होने न तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है तशो तो संगत दा फरक अहां गल करा दे न दोस्ती दी कि दोस्ती दा अहंदे जीवन च कितना महत्व है। पानी दी जेड़ा हर बूंद अहां जो जड़े से सिखांदी है कि कुछ ना कुछ अगर अहाँ संगत अगर अहाँ दी अच्छी है तो अहाँ अपने जिंदगी दे सफ़र जो बेहतर तरीके ने इंजॉय करी पाते न कने सफलता दी ओर जड़े से बढ़ते न। पर अगर अहाँ अपनी संगत अच्छी रख दे न ताई अहाँ अपनी जिंदगी च सफलता हासिल करी पाते न कने अहाँ गलबात करा दे न दोस्ती उपर कि दोस्ती दा अहाँ दे जीवन च कितना महत्व है तशो तो दोस्ती दा अहाँ दे जीवन च क्या महत्व है सच्ची दोस्ती दी पहचान अहाँ किस प्रकार जिहड़े से करी सकते बिना शर्त दे अगर कोई अहाँ दा साथ दिंदा है या अहाँ दा कोई दोस्त है से अहाँ दा साथ दिंदा है तां अहाँ तिसदी जिहड़ा सच्ची दोस्ती है से अहाँ जो पूरी यानी कि उम्र भर जड़े से अहाँ दी दोस्ती जड़े से चलती है कने इसी कने जलू अहाँ दा टाइम या हाँ मुश्किल समय च जड़े से अगर से अहाँ दा दोस्त अहाँ दा साथ दिंदा है तो तिसते भी अहाँ जो ये समझ आंदा है कि नहीं ये जड़ा दोस्ती है से बड़ी प्यारी है कने इसी कने जड़ा खुली बातचीत यानी कि जलो अहाँ जो तनाव होंदा है या अहाँ जो ज़्यादा टेंशन होंदी है या कोई भी टेंशन अहाँ लेना शुरू करी दे तो कुथी ना कुथी अहाँ अपने जड़ा दोस्त हैं तिना कने अपनी जड़ा गल है से जरूर शेयर करते न कने अगर अहाँ अपनी जिंदगी दे सफर च अग्गे बढ़ा दे न कने अग्गे नहीं बढ़ी पा दे न तो सही दोस्त अहाँ जो कुथी ना कुथी अग्गे बढ़ने दी जड़ा प्रेरणा है से जरूर दिंदा है सभी अहाँ दी सच्ची दोस्ती है तो दिखा दोस्ती दा चुनाव जड़े से अहाँ खुद ही करते न कने चाहे से स्कूल दी गल करिए चाहे से कॉलेज दी गल करिए हर जगह अहाँ अपनी दोस्ती दा चुनाव जड़े से खुद करते न पर अहाँ पर निर्भर करता है कि अहाँ किस प्रकार जड़ा दोस्ती है तिजो निभाते न। अगले जड़ा श्रोता है न से अहाँ कने जुड़ चुके हैं न कर दें तिना कने गल बात। हेलो हेलो नमस्ते जी जी स्वागत है जी तोहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: जी बढ़िया सासड़ा
0: जी अहां भी ठीक ठाक हैं जी तोहां कुथु ते बोला दे कने तोहां दा ना के है जी
1: आसी दबारी ते बोले ने ना बनने दा दे दिया
0: जी सिद्धबाड़ी ते बोला दे बंदना जी
1: हां जी
0: जी ता बंदना जी क्या काम कार तुहां लगाया क्या करा दे
1: बस कपड़े साफ सुथरे
0: जी ता आज यहां जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा दे न से करा दे न दोस्ती ऊपर ता तुहें क्या लगदा दोस्ती दा जेड़ा रिश्ता है से कितना प्यारा है
1: हां जी
0: जी ता तुहंदे जेड़ा तुहंदियां सहेलियां भी हैं न
1: हां जी
0: जी तो तुहां कितना की साथ इना दा दिन देन या कितना की से तुहां दा साथ दिन देन
1: हां जी
0: जी तो वंदना जी आज तुहां कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: खोला मा कीड़े की दखल गले चाओ आया मेरा सेरू शराब दियो
0: जी कुंदिया गीत है जी
1: खोल अम्मा कीड़े की दगले चाओ आया मेरा सेरू शराब दियो
0: जी जरूर तोहन दी जेड़ा फरमाइश है से तोहन तक पहुंचा देन जी। जी ए है तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला। तोहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपने रेडियो दो शशि कहने। इसी कहने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे भी जरूर बढ़ाना है कने तोहा जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चल देन। सुन दे सब प्यारी दिया फरमाइशा जो कने तो सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी। तशो तो इस कार्यक्रम का जिड़ा समय है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। तो जरूर जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़िया कने हाँ कने गल बात जिड़ा है से जरूर करा। तशो तो चलते न गीत और
2: दूर परदेश से आई एक नवयुवती जब पहली बार हिमाचल की सुंदर और ठंडी

दर्शो तो सारे ही सुनया ए प्यारा देया गीत, प्यारी देई फरमाइश, कैसा लगा गोरिए पहाड़ा दा बसना। दर्शो तो गीत दे बोल बड़े प्यारे न, कने जालू पहाड़ा दी गल करिए ता कुथी ना कुथी ए जड़ा पहाड़न स्याहां जो अपनी तरफ जड़े से खिंचदे न, क्योंकि पहाड़ कने जड़ा प्रकृति है, प्रकृति दी जड़ा सुंदरता है से बड़ी प्यारी है। ताज़ी हवा हाँ जो मिलती है कने इसी कने पहाड़ा दा जड़ा नज़ारा है से और भी प्यारा लगता है। कने पेड़ां दी गल करिए ता पेड़ जड़ा न से

श्रोताओं तो सारे सुनिया प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश तो सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना थे ना अपनी रेडियो तो शशि करने इस कार्यक्रम का सफर तुहां तक लाइव चलिया तो सारे भी इस कार्यक्रम के सफर जहां करने जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते जरूर तुहां जिहड़ा हांदा स्टूडियो का नंबर है से तुहां तक पहुँचाई देना इस नंबर पर तुहां कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा नंबर है 7011817091 तो इस नंबर पर तुहां कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कुदरत दा उधार दसो तो कुदरत दे जिहड़ा खेल हन से बड़े प्यारे न हर चीज़ कुदरत जिहड़ा है सियाहां जो सिखाई करी जांदी है दसो तो जिहड़ा हां छड्डी करी जांदे न या अपने कर्म करा दे न कुथी ना कुथी अहां ये सोचदे न कि अहां बुरे कर्म कर दे न तो तिहदा फल अहां जो नहीं मिलना है पर जिहड़ा हां इसा दुनिया च या इस जन्म च करा दे न अच्छे कर्म करा दे न या बुरे कर्म करा दे न तिहदा पूरा जिहड़ा ब्याह समेत अहां जो जिहड़ा वक्त बिल्कुल गुंगा है पर मौन है पर कुथी ना कुथी से समय पर जिहड़ा अहां दे समय दे अनुसार अहां दे जितने भी कर्म हन तिन्हां दा जवाब जिहड़ा है से अहां जो ज़रूर दिंदा है अज अहां हसी करी जिहड़ा से पाप भी करा दे न पाप जिहड़ा से अहां जो कुथी ना कुथी बड़ा ज़्यादा बड़ी आ अहां पर फिर भी ये सोची करी चला दे कि अहां तो कुछ किता ही नहीं या अहां कोई पाप जिहड़ा से किता ही नहीं पर जिहड़ा से पाप अहां आज करा दे कने कल अहां जो है रोई करी जिहड़ा से चुकाना पौंदा है क्योंकि जिहड़ा कुदरत है कुदरत दी जिहड़ा उधारी है ना से बिल्कुल नहीं छड़दी है कुदरत दा नियम है अच्छे कर्म करके तो अच्छा फल मिलता है बुरे कर्म करके तो बुरा फल जिहड़ा से मिलता है कने इसी कने जिहड़ा कुदरत दी उधारी जिहड़ा से कर्म दी से चिट्ठी है कि जल वहाँ जिहड़ा भी गलत काम कर देन कोई भी अहां गलत काम करा देन तो से चिट्ठी जिहड़ा से सही पते पर जांदी से जिहड़ा चिट्ठी अहां भेजा देन कुसियो तो से सही पते पर जांदी कने अपना जिहड़ा हिसाब है से जरूर लैंदी तो हमेशा अच्छे कर्म करा पर अजकल दौर दी अहां गल करिए तो हर कुथी कोई ना कोई न्यूज़ जिहड़ा से अहां सुनते रहते न चाहे से छोटी छोटी बच्चियां न पिछे दिए भी तुहां एक न्यूज़ सुनी होनी है बड़ी दुखद जिहड़ा न्यूज़ है से तुहां सुनी है तो कुथी ना कुथी अहां जो अपना जिहड़ा ख्याल है सभी रखने की जरूरत है खुद जो एक काबिल इंसान बना या खुद जो इतना स्ट्रोंग बना कि अहां हमेशा खुद पर विश्वास करी करी चलन खुद पर अहां विश्वास कर देन ताई अहां आगे बढ़ी पाते न कने पेरेंट्स जो मैं ही बोलना चाहती कि अपने बच्चियां जो अच्छे संस्कार दिया लड़कियां जो तहां हमेशा बोलते रहते कि अच्छे संस्कार देने न अच्छी परवरिश देनी है कुथी ना कुथी जिहड़ा लड़के न तिना जो भी अच्छे संस्कार दिया अच्छा जिहड़ा व्यवहार है से जरूर दिया क्योंकि जालू पेरेंट्स अच्छा व्यवहार देना शुरू हो जाते न या अच्छे संस्कार देना शुरू हो जाते न तो शुरुआत जिहड़ा से घरे ते ही होंदी है घरे ते अहां शुरू कर देन ताई अहां तिना जो अच्छी परवरिश जिहड़ा से जरूर दे पाते न तो इसी कन्ने अहां फिरी ते अगे बढ़ना है कने तुहां जो कार्यक्रम दे सफर च थोड़ा जिहा मनोरंजन दी और भी लेकर चलना है क्योंकि तुहां जो इंतज़ार जिहड़ा से जरूर रहिंदा है तो इंतज़ार जिहड़ा से तुहां दा बिल्कुल ख़त्म होंदा है कने तुहां जो ले कर चलदे न अगली फरमाइश दी और सुनदे नि सा प्यारे दी या फरमाइशा जो तुहां सारी भी इंजॉय करा

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी देई फरमाइश। इसी गीत करने हाँ फिरी ते अपनी गलबात ऊपर वापिस जिड़े से जरूर आई यो ने कने तो हाँ सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ी सकते कने यहाँ कने गलबात जिड़े से जरूर करी सकते। अज अहां जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा दे न से करा दे न दोस्ती दी तो जरूर तुहां जो भी जेड़ा दोस्ती दा रिश्ता है सहां दे जीवन च बड़ा महत्व रखता है। दोस्ती है से कुथी ना कुथी अहां दा जेड़ा है से साथ जेड़ा है से हमेशा दिन दे न कने अहां कितना की साथ जेड़ा है से दिन दे न से अहां पर निर्भर करते हैं। तो हमेशा अच्छे दोस्त अहां जो कुथी ना कुथी अहां दी जिंदगी दे सफर च अगे बढ़ने दा जेड़ा हौसला है से जरूर दिंदे न कने कुथी ना कुथी जेड़ा मस्ती भरे पल हैं से चाहे स्कूल दे न चाहे से कॉलेज दे न से तुहां जो जरूर याद जेड़े से आंदे न तिने यादा जो अहां कुथी ना कुथी संजोई करी भी रखदे न क्योंकि अजकना जेड़ा दिन है से अहां किस प्रकार इंजॉय किया सभी तुहां जो याद होना चाहिए या तुहां कल पर निर्भर तो नहीं हैं कि ये सोचा तो उन्हें कि कल जेड़ा है से अहां कलकना जेड़ा दिन है से अहां इंजॉय करना है अजकने दिन जो छड़ी करी तो हर दिन इंजॉय करा अजकना दिन है इस जो भी इंजॉय करा कने कल तो कुनी दिखा तो अजकना जेड़ा दिन है उस जो इंजॉय करा कने अपनी फैमिली जो भी जरूर जेड़ा समय है से दिया क्योंकि समय जो हाँ हमेशा कोसते रहते हैं कि यहाँ समय नहीं है पर हाँ अपना जेड़ा समय है से कुछ लगाते से तो हाँ सारे जो पता है कि यहाँ अपना समय कुछ कुछ लगाते न थोड़ा दिया सोच विचार करके दिखा कने इसी कने अहाँ भी तो हाँ वास्ते थोड़ा दिया सोच विचार कर देना कने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ाते हैं तो हाँ सारे जो लेकर चलते न अगली फरमाइश की ओर तो हाँ सारी भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा कने इन्ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं तुह सारे सुनिया एक गीत फरमाइश। इस गीत की फरमाइश अह तक पहुँची होवे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। तिना दा ना वे सपना जी। तो जरूर सपना जी तक अहाँ एक गीत पहुँचाया कने तुहा सारिया भी इंजॉय किया। कने इसी कने सफर तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। तो तुहा सारी अपनी रेडियो तो शशि जो दिया अनुमति कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। गूंज अपने बंदी।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
16: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: तक।
1: 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपने रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल, फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरे TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
16: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

0: नमस्कार श्रोतों, बार लग रही बरखा काफ़ी तेज धर्मशाला मंच और सचिन कपूर हाजिर हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा, सभी श्रोतागण रहा। काफ़ी तेज तरार बरखा किया सो इस समय लग रहे हैं श्रोतों, और मौसम काफ़ी ज़्यादा हसीन भी आ और काफ़ी ज़्यादा किया सो बरखारा वाला मौसम भी है इस समय, है ना। तो इंदे श्रोतागण हस हो गए कनेक्ट हो चुके हैं ना, हालांकि तो सब भी पूछ सकते हैं 7018889 पर कॉल करे करे आइया। फिलहाल इंदे जो श्रोता हस हो गए कनेक्ट हुए तीनिया जो तुस हो गए रूबरू करवंदे। नमस्ते जी।
1: नमस्कार भाजी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, नमस्कार भाजी। हाँ जी, हूँ भाई।
0: अच्छा, और ठीक ठाक राजीव भाजी?
1: हाँ जी राजीव भाजी भाई।
0: कौन बलुंदन और खड़ी हैं बलुंदन जनाब?
1: मैं विजय कुमार बोल रहा था कोतवाली बाजार से।
0: अच्छा जी विजय जी, कोतवाली बाजार के दे बरखा?
1: बस बरखा लगी है,
0: काफ़ी तेज लगी है
1: ना? धीरे धीरे ही।
0: अच्छा अच्छा, कौन देना गीत होना पसंद कर ले जनाब, पहले तो ये दस
1: गाड़ा सुनाई जाए। नारा रक्त नारा वक्त।
0: हाँ जी,
1: नारा रक्त नारा वक्त,
0: नारा वक्त नारा वक्त।
1: हाँ जी
0: ना जी, गाना ये नहीं गाना है कि ना बो रहा है रक्त तो ना बो रहा
1: है वक्त। हाँ जी हाँ जी,
0: चलिए जी जरूर तू सुए गीत होना ले।
1: ठीक है जी, ठीक है
0: जी, धन्यवाद। श्रोतों तो सब बंडू ने समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया, और आऊँ सचिन कपूर तुंदा अपना वेड़ी चौकी FM बैंड 91.2 MHz पर है वेड़ी गुंजन। हाँ, और 5 बजे तक रे कार्यक्रम चलना। इस कार्यक्रम मान्य जानकारी सोगे भी तुसु है रूबरू करंदेन, सोगे सोगे धर्मशाला रे कुछ एक खास जानकारी होगी भी तुसु है रूबरू करवंदे हिन। बहुत सारे श्रोता रहे कॉल्स के ना सो लग रहे ना, ज़रूर है अटेंड कर ले सभी रहे, लेकिन आइए जी आगाज़ कर लें देन पहले, और आगाज़ तो बाद की है सो फिर बाकी जानकारी की है सो तुस हो गया है ज़रूर साझा कर ले सभी पहले क्या सो आगाज़ कर लें देन कार्यक्रम रहे इस

0: শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো এস বি টিউন কর রহা আর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ গেন সো চল রহি তা আগমো কে ফিরে বহুত বহুত স্বাগত হে হার্দিক অভিনন্দন হে সবি হুন্ডে আলে রা সবি শ্রোতা গণ রা কেসে তো সব উম্মীদ করনু তো সব ঘরে বুনে রাজি বাজি বুনে আর আপনার ঘরে স্বাস্থ্য বুনে হিন হেরা লাইফ মা অক্সর বলনু কি স্বাস্থ্য রহনা কি সো জিন্দগি রি বহুত মোটি পুঁজি হে बहुत अच्छी पूंजी है। और अगर तो है स्वास्थ्य इन तुम्हारा शरीर बिल्कुल फिट एंड फाइन अगर से दुख बीमारी थो तो ग्रसित नहीं ना तब तो है अपने आप में किया सो बहुत बेहतर महसूस करु करते बुने हैं है ना तो है भी और तुम्हारा परिवार भी अगर तुम्हें हॉस्पिटल रह चक्कर ना लगू कर दें तो। और चलिए अब बाकी वेड़ी गुंजन तो है ट्यून कर रहा या है फेसबुक रे माध्यम थो भी किया सो लाइव जुड़ गए तो सुसोगी 7088879 पर नंबर आक मौके फिर हूँ शेयर करना हूँ जनाब 7088879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल करी करी अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं यह गल्ला रहा खास ख्याल रहे श्रोतों की जानकारी साझा करने लायक जरूर हुआ बहरहाल इन श्रोता करना सूखे कनेक्टेड है नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: अच्छा जी ठीक ठाक ने राजी बाजी तो है
1: आज भी बढ़िया था सुना
0: हाँ है भी ठीक ने जी है भी राजी बाजी हिन
1: ना ना काम सुना बन बन दिया ने साहब
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: ठीक है जी जरूर सुन ले तो सुएगी हाँ
1: जी शिरवाड़ी से
0: जी जी जी धन्यवाद जी चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो फिर हक मौके हगू लेकर चलते हैं और अगले श्रोता जो कि सो कनेक्ट कर दें तो सोगे नमस्ते जी
2: नमस्कार सचिन जी
0: नमस्कार जी नमस्कार क्या हाल चाल ओ शुगर तो ग्रसित न तो है ना जी
2: शुगर अच्छा, भी डिमांड
0: तो दे डिमांड जरूर आवश्यक पूरे करने आसू शुगर थो तो है ग्रसित न तो की करे अपनी देखभाल कर देन और कड़ी 10 दिन तो है शायद दस सौ दिन
2: टांडे जो आई ली बुरी आसान दरनाव लेंगे ना
0: अच्छा
2: दरनाव लेंगे ना मिलने मिलना
0: तो है रूटीन चेकअप करन देन अपना
2: हाँ की जगह तो बीपी वापिस आप सेट अपने स्टार इन सोने दिन
0: अच्छा अच्छा बाकी शुगर कितनी इंदे तुंदे
2: शुगर सागर आ रहे हैं तार सुनने बाकी ठीक है

0: ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ੂਗਰ 848 ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ
1: 848 ਆ
0: ਆਏ ਉੱਪਰਲੀ ਦਾ ਸਲਾਈ ਘਟ ਜਾ ਠੀਕ ਆ
1: अच्छा फास्टिंग एरा जी मुझे लगता है कि जितने भी शुगर पेशेंट ने तीनों रूटीन चेकअप की असो जरूर कराना चाहिए है ना। और इंसान जो कि असो सभी पहले अपने आप तो प्यार करना सीखना चाहिए। अगर इंसान अपने आप तो प्यार करता है तो सो सभी हो प्यार कर सकता है और दूए री भी दुख तकलीफ और दूए री भी भावना जो कि असो समझ सकता
0: है।
1: जी जनाब कौन देना गीत हूं दसो
0: आज नौना पने आ रहा नाले केड़ी लगी रे।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ जी
1: ठीक है जनाब जरूर सुन ले।
0: ठीक है सर ठीक है।
1: अच्छा तो ये बहुत अहम गल है बहुत जरूरी गल है कि इंसान जो कि है ना सो अपने आप सो की प्यार आवश्यक करना चाहिए जरूर करना चाहिए और सो इंसान के सो और योगी भी प्यार कर सकता जो आपू सो की करा है ना अपनी देखभाल करा। और जितने भी चलो जो शुगर पेशेंट हैं जो बीपी पेशेंट हैं या अन्य जितनी भी बीमारी तो ग्रसित हैं सो सब अपना रूटीन चेकअप किया सो जरूर करा जो कि इनका खान पान तस हिसाब रहा इनका दूध दही तस हिसाब रहा अजकल है ना। चलो जिन्या ले तो घरे गाई हीन सो तो चलो खरा खंदे बुने जिन्या ले अपनी बगड़ी अपने हार लाड़ लेकिन मॉडर्न जो है मॉडल जमाने री और चली गछूरे ने तड़ी भी मायने रखता है जो कि बहुत सारी चीज़ें जी दही बुझेगो सो है बाजारों खरीद दे सो तो एक सोचते हेल्थ मतलब तुम्हारी हेल्थ जो ठीक रखता बो आना जितनी भी चीज़ है ना सब्जी पुछगी कुछ भी पुछगो सो तो कुछ भी ठीक नहीं आज कनी रेट में लेकिन फिर भी रोज़मर्रा की चीज़ है ना सू खाना तो पैनी खरीदना तो पैनी है ना। लेकिन यह आ कि अपनी सेहत का ख्याल कि असो जरूर रखा और खासकर सो जरूर रखा जो कसकी न कसकी बीमारी तो ग्रसित हैं एरा अगर तो है ना कसकी हो रही पर डिपेंड तीन तकर मत रहे जी तकर तुम्हें जिब ए वाणी की चलती है इफ जिब भी बालने ना कैली बालना ना कि हाँ भाई मुझो फलाने दिन की असो चेकअप वास्ते ले चला जी फलाने दिन गाना। और अगर तो है अपने आप अपने शरीर का ख्याल रख देन ध्यान रख देन तो है बेस्ट हैं फिर तो है फिर और ही भी केयर करी सकते हैं और इसोग भी प्यार किया सो करी सकते हैं और ही भी दुख तकलीफ जो किया सो तो है समझ सकते हैं सो तो। और अगर तो है अपनी दुख तकलीफ जो किया सो दबाए कर रखते कि मुझे जिक्की लैने कुछ ना बुंदा जिक्की लैने कुछ ना बुंदा तो ऐसा नहीं है सो तो सो कुछ ना बुंदा आख दिन ऐसा बुंदा जो ऐह ना एक्सैप्ट करो रो बुना जो तो है ना एक्सैप्ट करो रो बुना सो चिकने वाली गल ना बुंदे दुख बीमारी जकींदा नहीं लग रहे तो डॉक्टर लग अच्छा प्राइवेट क्लिनिक मग अच्छा सरकारी हॉस्पिटल मग अच्छा और तिया दुख बीमारी जो किया सो खुले करे किया सो डॉक्टर सो के बयां करा। और अगल और कि मैं रुकीन दे बहुत सारे मनु के ना सो बहुत डर देन दूर को गाना मेरे अपने मासी बड़े बड़े डर दे सो मतलब डॉक्टर लगाने हो खड़ीने हो डर दिया कुछ पूछने हो डर दिया। और आप केवल मेरी मासी ना ऐसे न जाने कितनी और मासी भुनी मेरी जो आप डॉक्टर लगाने थो और तियों कुछ पूछ मांग करने थो किया सो डर दी हैं है ना। ता ऐसा कुछ भी नहीं है दे आर मतलब कम्युनिटी वर्कर्स है ना सो क्या ना सो असु सभी वास्ते हैं। और ठीक है जो तुसु लगता मैं बहुत जगह ये शिकायत भी हुन रहा कि फलाना डॉक्टर रा डंगा हो गिना कने उगड़दा फलाना डॉक्टर गया सो डंगा हो गिना हेर उगड़दा। रिसेंटली आऊँ तुसु दसना चाहता धर्मशाला हॉस्पिटल मुझे एक खबर मेरे अपने ही दिती मेरी मासड़ रही तबीयत के सो थोड़ी ख़राब थी और आऊँ ना तो तस समय उपस्थित ना तो लेकिन फैमिली व अन्य मेंबर के थी सो उपस्थित थी तो तीन बोलो कि आप डॉक्टर के सो मतलब एमरजेंसी में बेकुरत हो और सो फोन ना होगी मतलब लोगुरत हो फोन ना होगी फोन ना ऑटो कर दत हो और अस हो गया सो नर्स से ट्रीट करो मतलब डॉक्टर के सो अस वो एरू बिना फोन गुमाई कर एर और रखो बिना। मेरा बलने का तात्पर्य ये नहीं कि चलो मेरे मासड़ तामे बलो ना मेरे हज़ारों इन्हें मासड़ बुने न लख इन्हें मासड़ बुने न जिन्या हो गए ट्रीटमेंट किया सो बुंदे है ना। फिर यारी वीडियोज़ वायरल बुंदी और ਪੈਂਦੀ ਹਿੰਨ ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੋ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਰੇ ਡਰ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਪੁੱਛ ਗਿਲਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੁੱਛ ਗਿਲਾ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਪੁੱਛ ਗਾਣਾ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਗਾਣੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋ ਸਭ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣੇ ਆ ਸੋ ਕੇਵਲ ਅੱਕ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਲਨੇ ਥੋਂ ਨਾ ਬੂਣਾ ਹਾਂ ਸੋ ਕੇਵਲ ਅੱਕ ਕਸਕੀ ਔਰੀ ਪਰਸਨ ਰਹੇ ਬਲਨੇ ਥੋਂ ਨਾ ਬੂਣਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸੋ ਦਬਾ ਦਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਬੁਣੀ ਜੋ ਡਰਦੀ ਹਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆ ਸੋ ਕਿਣਿਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਣਿਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੜੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮਾ ਨਾ ਅੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਬਿਖੁਰੇ ਬੁੰਦਾ ਜੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲੇ ਬਿਖੁਰੇ ਬੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੰਦਾ ਐੱਮ ਓ ਬੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਬੁੰਦਾ ਹਾਂ अन्य ऑफिसर बुंदे तिन्या ले जिगर तो है कंप्लेंट की असो भी करी सकते हैं और मुझे ये लगता है कि डॉक्टर ये दायित्व बनता है ये फर्ज बनता है कर्तव्य बनता है क्योंकि सरकार अगर तिन्यो तस हिसाब हो गई पेमेंट करू कर दे हा चलो तैयारी भी मेहनत आ लेकिन करू कर दे हा तो सो इति वास्ते कि कोई भी मरीज तुसु ले इच्छू करता हा अपना दुख दर्द ले करे ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੋ ਤਸ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਰੋ ਕਰਾ ਅਬ ਇਹ ਅੱਕ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਰਾ ਕਿ ਸੋ ਦੋਈ ਕਿੱਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਨੂ ਆ ਦੂਆ ਕਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਤਾ ਕਿ ਸੋ ਹੇਰੂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੋ ਦੂਆ ਕਿੱਸਾ ਐਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚਾਹੇ ਸੋ ਤੋ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਛਾ ਦਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚਲੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਨਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮਾ ਕੇ ਆ ਸੋ ਚਲੇ ਗਿਆ ਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਚੂ ਕਰਦੀ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਮਾਣੂ ਕਹਿਣ ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਬਚੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਰੇ ਦੋਈ ਕਿੱਸਾ ਕਿ ਨਾ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਆ ਕਿੱਸਾ ਕਿ ਕਰਖਾ ਬੁਰਾ ਆ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਆ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕਨਗਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੂਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕਸ ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵਪਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਕਸ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਸੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸੋਫਟ ਕੋਰਨਰ ਵੀ ਸੇਰਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੂਣਾ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸੋਫਟ ਕੋਰਨਰ ਜੋ ਅਗਰ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਸੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੁਝੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਆਹ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਸ਼ੋਤੋਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸ਼ੋਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਨੈਕਟ ਕੇ ਨਾ ਸੋ ਬੁਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਰਾ ਲਿੰਦ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਤਾ ਸੋਗੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਹੈਲੋ
2: ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ
1: ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈੱਟ ਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਧੀਮੀ ਕਰੀ ਦਿਆ ਜਨਾਬ
2: ਨਮਸਕਾਰ ਸਚਿਨ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ ਤੂੰ ਹੈ
1: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨੇ ਤੋ ਹੈ ਗੁਣ ਬਲੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੜੀ ਥੋਂ ਬਲੁੰਦੇ
2: ਹੈ ਜੀ ਆਉ ਅਮਨ ਕਪੂਰ ਬਲੁੰਦਾ ਜੀ ਯੋਲ ਹੋ
1: ਅਮਨ ਕਪੂਰ ਜੀ ਯੋਲ ਥੋਂ अमन जी अगर हम तुस उसे ही पहचानो करता था तो है ऊपर धान पद वास्ते भी खड़ू रहती है
2: बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी तू बिल्कुल सही पहचानो
1: जी अमन जी स्वागत है तुंदा वेड़ी गुंचन में ठीक ठाक ना
2: बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया तू ये होनु भी है आज
1: जी जी
2: आप फरमाइश भी है आप गाना भी होना चाहता है
1: जी पहले फरमाइश बोले लिया है टाइप कर लेंदे तुंदी फरमाइश आ जो
2: बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी ना बोल रहे हुआ जंगड़ू हुआ जोर में जोड़ी
1: क्या बात है अमन जी अल्ले जोड़े तो बनना दूर आ
2: चलो चलो जी सर जी थोड़ी लेंदे आज ते पुरानी संस्कृति है जी
1: चलिए
2: अच्छा लगता है थोड़ी देर
1: है बिल्कुल हक तो है गीत बल्लू गीत होने लेंदा और दुआ कुछ टॉपिक या कुछ मुद्दा तो है जिस पर चर्चा करना चाहते हो
2: बिल्कुल बिल्कुल है अपना मन वो कि इस टाइम में इस गल रखना चाहते हैं कि बरसात का मौसम और अगर वो जितना वो आता है नदी नाले को दूर है
1: जी
2: और जी जी
1: ਠੀਕ ठीक है मन जी, तुंदा ये सुझाव किया मुझे लगता है जितने भी अस हो लख श्रोता हज़ार श्रोता बन रहे इस समय तिन्हें होने लिए बुनो और तो सुहाइया युवा जैसे इस प्रकार सो गए कि असो अपने पंचायत रे बारे हैं या फिर अपने ग्रां रे बारे हैं कि असो सोचता तस देश रा भविष्य के सो उज्ज्वल ही नजर इंदा हा और हर हर देश रीढ़ री हड्डी के असो युवा बुंदा और तुस वही युवा अगर असूले हा इंदी पंचायत में हाँ तो मुझे लगता कि पंचायत बेहतरीन है। चलिए ठीक है अमन जी, तुम्हारी फरमाइश जरूर पूरी कर ले,
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद जी। शोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही और फेसबुक रे जरिए भी कि असो है बिल्कुल लाइव इन और इन वीडियो सेट में भी असो के बहुत सारे श्रोता के असो रोजाना से ही जुड़ू करते हैं। नमस्ते जी।
3: नमस्ते
1: नमस्ते जी, कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन?
3: मैं बागनी से बोल रही हूँ।
1: बागनी थों कुन बलून देन जी?
3: मेरा नाम राव्या है।
1: राव्या?
3: हाँ जी।
1: क्या बात है, आर आर ए वी वाई ए है ना जी? राव्या जी आवाज नहीं
3: जी,
1: राव्या जी तुम्हारी आवाज नहीं छुगर दिया लेकिन अब छुगर दिया।
3: तो मैं फोर्थ क्लास में हूँ, मुझे कोई गाना सुनना है।
1: अच्छा,
3: मुझे
1: भगवान, हाँ जी,
3: मुझे भगवान का ये कौन है, मुझे भगवान का गीत सुनना, आप सुना देंगे?
1: अच्छा ठीक है रव्य जी, कस स्कूल पढ़ दें तो है?
3: भारती पब्लिक हाई स्कूल सिद्धबाड़ी।
1: भारती पब्लिक हाई स्कूल सिद्धबाड़ी, ठीक है जी। तुस वो गीत होना ता जरूर है शिवरा गीत के सो तुस वो जरूर होना ले।
3: हाँ जी
1: ठीक है जी, जरूर तुम दी फरमाइश है पूरी कर ले रव्या जी।
3: ठीक है
1: धन्यवाद
3: धन्यवाद।
1: चलिए सो तो बहुत सारी जानकारी के ने सो असू तुस वो की शेयर करनी और इन द्रोतक हैं सो लगातार असू के कनेक्ट हो चुके दे हैं और बिल्कुल है फेसबुक रे जरिए थो भी कहने सो लाइव इच्छू कर देन आजकल और असू की जो लाइव बन रहे हैं सो पायल गुप्ता जी बन रहे हैं, बिंदु देवी बन रहे हैं और आर के भारद्वाज, क्या बात है, आर के भारद्वाज, राकेश भारद्वाज जी तुम दाओ फेसबुक रे माध्यम थों किया सो स्वागत करनू, हार्दिक अभिनंदन करनू। तो है धर्मशाला री सो आवाज़ आ जो हमेशा किया हर तस अनूठी पहल पर हगू इंदन जो शायद ही कोई इन्हें थों पहले सो बार सोचा तो है तिया अनूठी पहल में गया सो सब थों अगे इंदन, चाहे सो धर्म परिवर्तन रे गल भुआ चाहे सो अन्य कोई भी इस तरीके रे कार्य बुन। रगेश भारद्वाज जी आऊँ नाचीज सचिन कपूर तुंदा वीडियो गुंजन में भी स्वागत करनुआ तो है फेसबुक रे जरिए हो गए क्या सो सु हेरू कर दे। चलिए जी तिंद अगले श्रोता सो गए कनेक्टेड हिन। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन?
4: खनियारा।
1: अच्छा खनियारा थो
4: जी,
1: खनियारा थो कौन बोलूं देन जी?
4: शबनम।
1: शबनम, शबनम जी का स्कूल है पढ़ देन, कुंडिनी क्लास में पढ़ देन और क्या फरमाइश है तुंदे?
4: नौ में पर पढ़ दिए।
1: अच्छा नौमी पर देन हागू जी,
4: पटोले
1: पटोले स्कूले पर देन। हेलो
4: हेलो,
1: हाँ जी शबनम जी आवाज इच्छू कर दी इंदी?
4: ओ जी
1: शबनम जी फरमाइश दसे दी आपने, फरमाइश किया
4: आदेश वाला।
1: हाँ जी
4: आदेश वाला,
1: आ
4: बोले नाथ,
1: आ स्वामिया गीत तेरे बोलने जी।
4: हाँ जी
1: ठीक है जी, धन्यवाद।
4: ठीक है
1: चलिए जी, कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और अबे फरमाइश शरा दौर के सो बहुत ज़्यादा वजू असूल है सबेरी फरमाइश ज़रूर पूरी कर लेकिन चलिए फरमाइश तो पूरी करने हैं दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम लेकिन मोटे गल ये कि बड़ी गल ये कि क्या इन द हेल्थ डिपार्टमेंट की असू असू सो गया हा और ऐसे न जाने रोज़ाना कितने मन उन जो डॉक्टर हगूँ या नर्स हगूँ कि असो खड़ीने माँ हिचकिचन देन तो त्यारी हिचकिचाहट जो थोड़ा करे दूर करने वास्ते आज कना है ये टॉपिक चुनू हाँ कि मैं पहले बोलो कि सो कम्युनिटी वर्कर्स ने सो पब्लिक वर्कर्स ने यानी कि सो असु वास्ते कि सो थड़ी तैनात हैं है ना असु वास्ते तरीके ना सो बिखरे हैं और अगर ऐह झिझक खल ऐह तिया आगों के असो अपनी पूरे बीमारी के असो तिन्यों विस्तार पूर्वक ना दस लै तो फिर तो तीन तैयारी

सिफा के जरिए इनके तिन्या तक मैसेज पहुँचाओ करते हैं। ता आई थिंक रकेश भारद्वाज जी वीडियो रे जरिए भी हुन देन और ये भी हुनु कर देन और अन्य जितने भी चाहे सो MLA धर्मशाला हुन सुधीर शर्मा जी त्यारे स्टाफ रे मेंबर हुन चाहे अन्य हेल्थ डिपार्टमेंट थो जुड़ रहे हुन सो की बहुत सारे श्रोता जुड़ देन ता ये मैसेज दुनिया तक कन्वे के सो जरूर करना है और इस तरीके रे वादार्थ कहना इस तरीके भी चीज़ा कहना सो दुआले ना भूने कोशिश है ज़रूर कर दें। बहरहाल अश्वनी सुकेतिया जी राम राम सचिन जी जय श्री राम जी सभी जो जय श्री राम हाँ चलिए था फरमाइश दौर पूरा कर दें श्रोतों और तो सब बने रहा आर जे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रोर कार्यक्रम हिंदी अपनी गपा गया सो बिल्कुल लाइव चल रही वीडियो सेट में तो है सब श्रोता जरूर कॉल कर सकते हैं 708-8-8-709 पर नंबर अक मुके फिर साझा करनो 708-8-8-709 पर श्रोताओं तो चलिए सो के बहुत सारे श्रोता जुड़ रहे हैं और फिलहाल श्रोता और जुड़ चुक रहे हैं। नमस्ते जी। हेलो।
1: नमस्ते सचिन भाई।
0: नमस्कार जी।
1: नमस्ते
0: चिकुन बल्लुंदन और कड़ी तो बल्लुंदन
1: सचिन भाई राकेश बात बात कर रहा हूँ।
0: अरे क्या बात है राकेश भारद्वाज जी तो है फेसबुक रे माध्यम तो लाइव जुड़ रहे भी थी यस वो के
1: जी जी जी जी सचिन भाई मैं फेसबुक में रहो हो ऐसी हो ना
0: जी।
1: हाँ जी ता आक इन द श्रोता या आप इन द भाई या
0: जी
1: इन्हें आप समस्या रखे थे गए हॉस्पिटल गया सो उचारे करना इन्हें तो अच्छे हो ट्रीटमेंट ट्रीट ना हुआ
0: जी जी जी
1: ता सचिन भाई चिंता माध्यम हो तो दसना जानता हूँ ये आज सोशल वर्कर सोशल एक्टिविस्ट असा कई बार कोशिश कर दे कि भाई इंडिया जेड़ा धर्मशाला हॉस्पिटल में धर्मशाला हॉस्पिटल ने इंडिया जितने सरकारी दफ्तर में मतलब जेड़ा कर्मचारी है ना सो जेड़ा इंडिया वाले ना मन हुंदा कि यहाँ अच्छा अच्छा होगी भी है करना बट कई बार क्या हुंदा कि कई बार फिर भी नेग्लिजेंस भी पहुंच जाते हैं
0: जी।
1: बिल्कुल
0: राकेश भारद्वाज जी तो है सोशल एक्टिविटीज सोशल तरीके की तो है जनता की एक्टिवता रेंदे ही रेंदे काफ़ी साल हूँ और तो है और भी धर्मशाला रे बहुत बेहतरीन बेहतरीन काम के ना सो तुंदे जरिए भुंदे भी हैं लेकिन ये एक बड़ी मोटी समस्या की सो रे हो रही कि जो आम जनता हा चलो जिया लेता चलो पैसा ढेला सो तो चलो प्राइवेट में खिंच करी अपनी बेहतरीन फैसिलिटी है ना सो ले लेंदे लेकिन जिया ले पैसा ढेला नहीं इस समय या तस हिसाब रे पैसे ढेला नहीं सो तो सरकारी ही जाए सो तो है धर्मशाला ले लिया जाए टांडा ले लिया जाए अन्य किसी भी हॉस्पिटल जो ले लिया तट्ठी हो गंदे लेकिन चलिए मैं ये भी राकेश भारद्वाज जी क्लियर करूँ थो कि हर पहलू रे दो ही किस्से के ना सो बुंदे बुंदे है ना ये एक चलो नेगेटिव तरीका थो लेकिन पॉजिटिव भी तो हिन हज़ारों रे हिसाब हो कि क्या न सो मरीज गंदे और इन दया के डॉक्टर के ना सो अपॉइंट कर दें तीन है ना तो चलो लेकिन
1: ओ या, ओ या,
0: ओ, जी
1: ओए सचिन भाई सो या गल बोलो ना क्या क्या हमदा के अगर भी आऊंगो हॉस्पिटल ना
0: जी तब
1: मुझे लग रहा कि सिर्फ आऊंगो कने डॉक्टर मुझे ट्रीट करना कने सो बट आप डॉक्टर जरा 10 बजे हो लेकर संध्या 5 बजे तक अलग अलग तरह के मरीज कर दो 250 बंदे 300 मिलो कर अलग अलग तरह की बीमारी ना अच्छा तो सेरा मेंटल लेवल के तुना मतलब हाई होना के तुना जबरदस्त डॉक्टर होना सो जरा 250 बंदे हो अक्की है हिसाब ट्रीट करवा सो बट फिर भी कई बार जी बिचा मा कई बार ऐसा पूछे हम के बंदा है क्योंकि ह्यूमन बींग है ना वही मशीन तो है नहीं कि भाई तो सॉफ्टवेयर फिट करी चुका कने भाई तेस जेड़ा तेस को क्वेश्चन पूछना सो एक्यूरेट आंसर देना ह्यूमन बींग हम यहाँ तू भी तुस भी ह्यूमन बींग है कई बार क्या हम कि 10-15 बंदे जो है ऐसा मतलब हैंडल कर लेंदे ना तो बाद इंदा थोड़ा जे जेड़ा मेंटल लेवल हों थोड़ा इंदा जेड़ा सामने वाला यदि अगर कोई पेशेंस लूज कर वर्दा था अस वो झुके गाना चींदा
0: जी
1: हाँ क्योंकि अस था चलो मतलब एज मरीज या तुम्हारे अटेंडेंट से ट्रीटमेंट करना चाह रहे ना दोनों साइड ह्यूमन बीइंग आ तो दोनों साइड गलती की संभावना रहनी रहनी है
0: हाँ रहनी रहनी है
1: हाँ जी
0: हाँ जी हाँ जी प्रतिशत चलिए ठीक है राकेश भारद्वाज जी तो है कि सो लाइव इच करी और वीडियो मंच खासकर लाइव इच करी कि सो ये थोड़ा करी स्पष्टीकरण असु सब भी दी दिता है। लेकिन राकेश जी को तुंदा राज थो तुंदा राज आ और शायद आगू भी रिला तह ऐसे फे बलना चाहते इतनी कह गल बलना चाहते कि थोड़ा कर तुहे भी अपनी औरतों के सो दिशा निर्देश दी दीन कि जहने भी कोई गरीब तबके रहे इंसान या हमें तुम्हें जहने भी गंदे तो तहने तिन्या हो गया सो तस लिहाजे हो गया सो तिहारी ट्रीटमेंट बो बस आम इंसान इतना करी चाहता जी।
1: जी जी जी सच में चलिए राकेश जी बाकी जेड़ा रेडियो माध्यम हो समस्या कोई परेशानी तो ये मतलब संवाद आज लाइव मैं जो सचिन भाई रे माध्यम हो रेडियो माध्यम हो गल रखना चाहते है
0: जी बिल्कुल बिल्कुल तुसु रखने जनाब का जो कि सरकार तुम दिया
1: ना ना ऐसा कुछ नहीं है सचिन भाई सरकार आम जनता रे मिले सभी सरकार मिले सरकारी दफ्तर जेड़ा सरकारी अस्पताल जेड़ा सो सभी रे मिला
0: बिल्कुल बिल्कुल सो अन्य तो है नो बोल पर छक्का मारो अब जो है गल्ला पर बहुत अच्छा लगो राकेश जी बहुत कुछ तुस होगी चर्चाएं बुंदी रहन दी ना और चलिए है बस सही उम्मीद कर देन कजो क्या है जरिया बन रहे ना कि आम जनता रे गल की है जो तुस तक ना पुछ दे सो पहुँचाने रा कह है जरिया ना तो बस सो काम है अपना कर देन बाकी तुम्हारा तहे दिल तो धन्यवाद करनो जी।
1: ठीक है
0: धन्यवाद। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रो और कार्यक्रम सचिन कपूर सो गए हूँ कर दिन इन दी अपनी गप्पा ये राकेश भारद्वाज जी थी है जो कि बिल्कुल सोशल एक्टिविटीज़ तो हिन्नी हिन्ने कम तो कर दे ने लेकिन सुगी सुगी के ने श्रोताओं बिल्कुल इन दे जो विधायक इन सुधीर शर्मा जी त्यां रहे ऑफिस रे इंचार्ज भी हिन ता चलिए इन्हें फ़ोन करो इन्हें लाइव होनो इन्हें फ़ोन करो अथा क्विक क्यू आर टी पूछ गई यानी कि क्विक रिएक्शन टीम पूछ गए फटाफट इन्हें फ़ोन करी करके ऐसो समस्या जो है रखे थे त्यारा समाधान करने रे कि ऐसो आगू गल रखे तो आऊँ भी उम्मीद ही कर सकनों हाँ कि आगू इस प्रकार री समस्या किया सो इन्हें वाले टाइम में किया सो इन दी आम जनता जो ना बोआ है ना इन दी आम जनता कि असो बेहतरीन तरीके होगी अपना ट्रीटमेंट कराए सका। बहरहाल इन दे अगले श्रोता सो की कनेक्टेड है। नमस्ते जी।
2: हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार
0: नमस्कार जी नमस्कार
2: ठीक हो स्वस्थ है
0: बिल्कुल जी स्वस्थ नमस्ते और भगवान री दया थो जिंदे न अनिल जी की 3 लाख पूरी दुनिया अंदर ना ऐसा भी भुंदा हुंडरा में कि मतलब हजारों करोड़ों हिसाबों की दुनिया सुनते हैं ना तो ती में से किया सो हजारों हिसाब है बंदा भी अगर उठता यानी कि तैयारी सुनते सुनते कि सो मृत्यु हो चुके जी
2: जी जी
0: तहे जागरूक नहीं उठ रहे और बुलंद आवाज बनी करी कि सो अपने जनता वास्ते काम करू कर दिन रेडियो रे माध्यम तो
2: देखो तो हाँ अगर इतनी बड़ी गल की ना मेरे सामने
0: जी
2: तो बताओ छोटी गल सा
0: जी
2: इस दुनिया से लगभग 8-8.5 अरब आदमी में मरदे मतलब सवेरे मॉर्निंग नहीं दिखते सवेरे नहीं दिखते कोई चिंता नहीं है अपनी चिंता बस खाने कमाने की भगवान के प्रति कोई धन्यवाद नहीं है कोई कुछ क्या सचिन एक आदमी है कि ऐसा ऑक्सीजन लेके आया पता होया ऑक्सीजन लेके आया सिलेंडर सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन ऑक्सीजन या पानी लेके आया था हवा पानी वायु लेके आया कुछ कुछ लेके आया था कुछ भी नहीं लेके आया सब चीज सब सच्चे च मिला ना अहा पर अहा भगवान जो के देता
0: कुछ भी नहीं
2: अहा भगवान जो के देता अहा नंगे आए थे ना तो नंगे रह गया ना दूसरी बात ये कि आप बात कर रहे थे अभी एक बड़ी बड़ा मुद्दा उठाया था डॉक्टरों या चिकित्सकों के बारे में, तो मैं थोड़ा उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। आज के जो चिकित्सक माना कि वो पढ़े लिखे हैं, बड़ी डिग्री को MBBS MD फलाना फला डिग्री लेके आते हैं, पर मैं कंपेरिजन करता हूँ कि हमारे पुराने जमाने जो वैद्य होते थे ना, वो इतने भरी इंटेलिजेंट थे, या ऋषि मुनि थे, इतने बड़ी इंटेलिजेंट थे या बुद्धिजीवी थे कि वो आदमी की एक जो जिसमें नाड़ी पकड़ते थे ना नाड़ी, और नाड़ी पकड़ के ही बता देते थे कि तेने एक हफ्ता पहले क्या खाया है, एक हफ्ता पहले क्या खाया। आज कल तो डॉक्टर पर जाओगे ना, वो आपका आपका चेहरा नहीं देखेगा, कोई नाड़ी या जीभ नहीं देखेगा। पुराने जो वैद्य होते थे वो आदमी का जीभ देखते थे और आंखें देखते थे कि उसमें क्या कमी क्या है, वही चीज मतलब आदमी को ऑब्जर्व कर लेते थे। तो आजकल का डॉक्टर तो उसके चेहरा नहीं देखता, उसको सीधे जाते हुए टेस्ट लिख देता है, टेस्ट लिख देता ताकि आदमी आदमी थोड़ा अगर बचा ना तो टेस्ट टेस्ट करवाते हो पहले आधा मरता पहले हो जाता है। एक तो हमारे इंसान में चिकित्सा जो बहुत महंगी हो गई है, आपको पता ही है,
0: बहुत ज्यादा,
2: एक चिकित्सा और एक शिक्षा बहुत ही महंगी है, जबकि दोनों चीजें शिक्षा भी और चिकित्सा भी, शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही फ्री होती है। मैं तो ये मेरा मानव जैसा है, कुछ देशों में है वैसे कि जो शिक्षा है फ्री है, तो शिक्षा अगर अगर हम सही मायने में विश्व गुरु बन जाते हैं तो कम से कम एजुकेशन इनको शिक्षा और जो चिकित्सा दोनों फ्री कर देना चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: निःशुल्क, ताकि। और जहाँ तक हमने डॉक्टर की बात करी, बोलते हैं कि इनका जो पेशा है वो एक समाज सेवा, आपने बोला अगर समाज सेवा होता तो इतना जो प्राइवेट डॉक्टर है मतलब जो अपने जो कार्य है वो सब भूल जाते हैं। जब आदमी हॉस्पिटल या में पहुंचता है ना, तो पहुंचने के बाद डॉक्टर कभी भी अपने मतलब उस कर्तव्य के प्रति कभी पूरा निष्ठा पूर्ण कार्य नहीं करता, वो सिर्फ मतलब आजकल तो मैंने कई जगह देखा कि वो पैसे के चक्कर उसका जैसे मर्जी उसका बिल बढ़ाते जाओ।
0: अच्छा बिल्कुल बिल्कुल
2: ऐसा भी है, ऐसा ये भी है। सत्य बात है, बिल्कुल सत्य है,
0: बिल्कुल
2: जो आजकल के हालात है ना।
0: जी बिल्कुल अनिल जी, कॉल इच्छू कर दिया और बड़ा अच्छा टॉपिक की सो मतलब है आज चुनो तदीबर तो है चर्चा करो कर दे, और मुझे बहुत अच्छा लगता तुमने हमेशा तो फीडबैक किया सो बेहतरीन इंदिया, लेकिन कॉल किए सो इच्छू कर दिया अनिल जी, गंदे गंदे क्या अक सुझाव किए जनता री औरतों जितने भी इस समय अगर हेल्थ डिपार्टमेंट रहे मनु के स्वस्थ वो होने कर दें, तो क्या सुझाव देना चाहती जनता?
2: मेरे को अब संदेश यही है कि हम अगर भारत देश में है ना, तो एक निस्वार्थ भाव से कार्य करें, पूरा दिन निष्ठा से कार्य करें, ताकि किसी को किसी के प्रति कोई मतलब संकोच ना रह जाए, कहीं मात्र ना रह जाए
0: जी,
2: क्योंकि कहाँ लेके जाना है, किसके लिए लेके जाना है आदमी को, अगर ये छोटी छोटी बातें याद हो ना तो आदमी मेरे ख्याल से निस्वार्थ ही कार्य करेगा।
0: बिल्कुल,
2: पर निस्वार्थ आदमी कर कार्य करके आज नहीं, हम सब पर एक पैसे का जो ऐसे एक माया जाल छाया हुआ ना दिमाग में, बस उसके कारण जितने अपराध है। कार्ल मार्क्स ने भी एक चीज बोली थी कि हमारे बीच में एक पैसा है, अगर पैसे को हटा दो ना तो दुनिया की आधी से ज्यादा जो डिस्प्यूट्स है ना वो हर जगह खत्म हो सकते हैं।
0: हाँ,
2: पैसा हटा दो
0: जी, बहुत ज्यादा
2: मुझे कार्ल मार्क्स की आज बात याद है
0: जी। चलिए ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जुंदा,
2: आपकी मैं वक्त ज्यादा ले लिया तो उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ।
0: धन्यवाद धन्यवाद अनिल जी। श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही है और तो है सब बन रहे हैं हस हो गया और भी श्रोता के इनसे कॉल करू कर देती है जरूर तो है जुड़ी सकते हैं हिंदी अन्य श्रोता भी 7081807099 पर नंबर अक मौके फिर हूँ रिपीट कर लूँ हाँ 7081807099 पर तो है कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इंदे अगले श्रोता सूखे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
3: हेलो नमस्ते भाई।
0: नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक ना
3: जी तो बोला
0: बहुत बढ़िया जी कौन बल्लून देन और कड़ी थों बल्लून देन
3: सुमन बल्लून दे दारी।
0: अच्छा सुमन जी क्या हाल चाल।
3: बस ठीक है मम्मी सर
0: जी सब ठीक ना जी। तो
3: और
0: सुमन जी चलिए अच्छा हुआ तुम तो कॉल भी चलिया तो है बिंदे रेगुलर श्रोता हिन और आज के ना तो है पहले इधर सगी कार्यक्रम किया सो कहने रहा हूँ करते थी है
3: फोन तो बढ़ते रहा कर दे अगर बीच जरा थोड़ा फोन चलिया।
0: अच्छा
3: चली मेरे जाता फिर थोड़ा मिस्टेक हो जी थोड़ी
0: ना ना इतनी मिस्टेक है जी सैलरी भी जरूरी है जिंदगी में जी दोस्त ना बोन जिंदगी में तो जिंदगी बढ़िया अधूरी दे लगते है ना क्योंकि इंसान कदी ना कदी की ऐसो नौकरी थो खिजी गंदा कुछ घराले थो कदी ना कदी की ऐसो खिजी गंदा है ना तो दोस्त के ऐसो बहुत जरूरी है घराले थो तो क्या खिजना मतलब ये लगता कि चलो थोड़ा एंजॉय करिए है ना पूरा दिन घर रहता। हाँ जी सुमन जी आज का ना जो इंदा टॉपिक थो सो टॉपिक तो कुछ मैं मतलब हेरो भी थो वारदात भी हेरी थी और कुछ एनालाइज भी करो थो कि जहने भी है जो अह तो है मनु हिन जो धर्मशाला या अन्य किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में गंदे हिन तो कभी कभी ये बचगंद कि कदी नर्स असू हो गया सो थिड़की दें दे कदी डॉक्टर थिड़की दें दे हैं तो तुस हो गई बुआ कदी कोई कोई ऐसा कोइंसिडेंस कदी
3: मेरी मम्मी थी है ना एडमिट थे ना।
0: अच्छा
3: खत्म हो गई तो बंद है रे थी मैं भी येरा कुछ कुछ उन्दा रे इन्हें यो चलो ड्यूटी उन्दे ना तैयारी चला है मंदे की कोई थकियन दे रही
0: जी
3: पर ड्यूटी तो ड्यूटी है ना
0: जी बिल्कुल
3: पर तिने बल दे रहे पर तिने अपनी नहीं सो कर दे नहीं सो तो फिर जाने खत्म हो गया ता सो आए थे ना फिर मैं भी बड़ा बकी ना भी बाकी थी मैं फिर
0: जी
3: ले लो अब इस टाइम तो सो क्या फायदा तुम दवाई से करे जाने है बल दे रहा तो सूखी है ये एरा एरा सतु है नहीं रही
0: जी
3: कई बार बंदा है ना बंदा होना चाहिए ना भाई कोई बंदा बन बंदा था भाई चलो कई बार करी कम देना भी आप लोग एकदम मिलना तो है तो चलो इतने मरीज हैं कि तीन आए करना होता भी है चलो कौन अपना दुख ज्यादा लगता ना भाई
0: मतलब इस तरीके का कोइंसिडेंस किया से तुसु होगे भी बचूरा।
3: हाँ जी
0: तो चलिए हाँ तो ये मैसेज इवन कि हम वीडियो भी बनाऊ करता है और ये मैसेज हम कन्वे भी करना चाहता हेल्थ डिपार्टमेंट तक और बेशक जो इन देड़ी अरे विधायक ने सुधीर शर्मा ते अरे मनु तक भी वीडियो पहुंचाना चाहता कि इस प्रकार हो गए कि सो आम इंसान की सो मतलब बलदा रहता चिलंदा रहता तड़पता रहता लेकिन सेरी सुनवाई किया सो ना बंदे ना बंदे हेल्थ डिपार्टमेंट में ना बंदे और अक वोट बहुत जरूरी है अक वोट भी बहुत जरूरी है लखा हिसाब आ गया सो अक वोट है ना।
3: हां जी
0: और तू सो के कोइंसिडेंस धर्मशाला हॉस्पिटल में भी छूरा जी
3: धर्मशाला भी ता कई बार ही है दिन कदे ना कई बार बाहर चलो ठीक है हां ज्यादा तो सो के दिन रख रही हो गाड़ा ही।
0: अच्छा
3: सो बड़ी बड़ी प्रसार कर दी
0: सब भी परेशान कर दी ना
3: परेशान मन मन देना मन बड़ा परेशान कर देना कई बारी पर जड़े चल कोई मनु बड़ा बेचारा श्री बंदा मजबूर ही बंदा कई बंदा के अंदर आ सुबाना ही है
0: अक्स वक्त वितिशा ते
3: आए तो सब सब कई कई ऐसी दिन है बड़ी में चिढ़ दी
0: अच्छा
3: दे सो सोई जी आ है तब नौकरी बुट्टी के खड़ी हुई ता है तब तो ना कौन दे गई
0: तीसमा खान
3: कर ली था
0: चलिए
3: अकल
0: लिहाजा बंदा गल करने रहा है ना
3: बेवकूफ
0: ने पर मुझे लगता कि जनता की असो थोड़ा करी इच्छा होंगी इस समय कि जो डॉक्टर्स ने जो नर्स साहिन सो एटलीस्ट प्यारा होगी के ना सो ट्रीट करना अक लिहाजे होगी के ना सो ट्रीट करना
3: हां जी
0: चलिए ठीक है जी तुंदा मैसेज है कन्वे करी था और एरदन अब है कि कितना करी सुधार किए सो बंदा चलिए जी जे सुधार ना बोला था अगली बारी तो है वोट मत बंदे कोई भी ला
3: बिलकुल
0: बिलकुल चलिए ठीक है जी फरमाइश तो पूछ ही ना सकती पूरी को जो कि आज आपकी गाना
3: ना वो इस आज भी कोई ना कोई ना
0: ठीक है सुमन जी
3: चलो गल बात ही थी हां जी धन्यवाद
0: धन्यवाद श्रोतों कार्यक्रम जो हगो बढ़ेंदे मुझे लगता आज का जो टॉपिक है थी पर बहुत सारे इन श्रोतक है ना सो हिस्सेदार बनू करते हैं जो कि जरूरी भी है जो कि कम्युनिटी रेडियो है और ये अपना गादा कार्यक्रम है और जाने आवाज़ उठी है तो हर एक नागरिक जो अपना फर्ज निभाई करे कि असो अज फोन चुकी करी फोन करना चाहता और इसी भी चाहता है लास्ट कॉलर आऊँ बल्ली सकता का जो कि चूर मिनटा मंजोले बचे हिन करमचंद जी जो कि नोटरानी मंदिर निवासी हिन और इस कार्यक्रम में हमेशा अपनी इनपुट की असो दिन दे लास्ट चूर प्रोग्राम क्या है बनाए न ततीमा भी यारी इनपुट बहुत ज़्यादा रह रही है करमचंद जी तुम्हारा वेड़ी गुंजन मा स्वागत है
4: धन्यवाद जी नमस्कार
0: नमस्कार करमचंद जी समय रा थोड़ा करे अभाव तो है बाखूबी जान दे हिन क्या आज का ना टॉपिक है चर्चा करे या तथी पर मुझे पता कि तो है ताई कॉल करे कि तू कुछ ना कुछ किया सो जरूर अपना सुझाव किया सो रखना तो क्या सुझाव तू है क्या सुधीना चंद हैं जनता क्या बोलते हैं
4: जनता ऐसा जी इन्हें वो भी बाहर दिया भगवान का तो बाहर दिया
0: अच्छा
4: है ना
0: जी
4: भगवान का तो ना लेकिन चलो
0: चलिए तो आऊँ सोई बोलूँ तो करमचंद जी ना कि दुई पहलू के ना सो बुंदे है ना हक खरा हक बुरा है ना चलिए कस जो जनता जो लागू करता सो इस प्रकार हो गया लागू करता है और दो जो दुआ फेस है सो है दस भी दिता कि चलिए हज़ार या 200 250 500 मरीजा जो क्या सो हेर देन है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए ठीक है करमचंद जी जी बिल्कुल अक्स वक्त पवित्र शत
4: चलो
0: जी
4: अब और बल्ली दिमाग दीना कुछ हुआ
0: चंद सेकंड बची ने करमचंद जी तो इनपुट देते हैं तुम दबे होते हैं दिल तो धन्यवाद करनो
4: थैंक यू धन्यवाद
0: थैंक यू जी तो शो तुम सब में पूछ गए तुम सब भी तो अलविदा लेने रहा तुम सब भी जो टाटा बाय बाय बलने रहा और गंदे गंदे बस ये बलना चाहूँ तुम सब भी जो कि हंसते रहे मुस्कुरा रहे और ठीक है आज पूरी स्टोरी की असर तो फेसबुक के जरिए भी सुन लिया और अपना वीडियो के जरिए भी किया सो सुनी लिया है ना तो चलिए अब कभी कुछ गलत ना बो कसी हो गया है दुआ करते हैं हर इंसान के सो अपना दायित्व निभा अपना कर्तव्य निभा ये भी है दुआ करते हैं इन शब्द था सचिन कपूर ले लेना तुझ तो इजाज़त नमस्ते धर्मशाला।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस, सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखा। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला, और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया। एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओ माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, पर साथ देने वाला कोई नहीं।
6: मेरे प्यारे दोस्तों, जन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम विक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं, आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।
1: पामगरे सा गाओ

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का, जितने भी श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घरों में बिल्कुल मस्त होंगे। देखिए, हमेशा कहता हूँ मस्त रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, इन्जॉय करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, फिर बेशक आपको जिस भी चीज़ से शांति मिलती हो वो चीज़ अपनी लाइफ में आप ज़रूर करें, आपका मानसिक संतुलन जो है वो बेहतर और बेहतरीन होना चाहिए, फिर चाहे बात जो भी हो। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और इस समय कार्यक्रम में हम बने हुए हैं वेड़ी गुंजन की उसी गूंज के साथ, जिस गूंज को आप अपने घरों में, अपनी दुकानों में, अपने कारों में और अन्य जगहों पर जो है वो सुनते हैं। तो इस समय धर्मशाला का मौसम सबसे पहले बताएंगे, इस समय 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और नमी की बात की जाए तो 80% नमी जो है वो इस समय धर्मशाला के मौसम में है श्रोताओं, और 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है उस समय मौसम जो है वो बना हुआ है श्रोताओं। तो यह है धर्मशाला का मौसम। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगाज़ कर लेते हैं कार्यक्रम का इस गीत के, आपके अपने वीडियो सेट पर।

चलिए, शो तो आगाज़ हो चुका है हमारे कार्यक्रम का प्यार के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हो रहा है इस गीत के साथ। शो तो आप सभी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर मैं आपके वीडियो सेट पर बिल्कुल हाजिर हूँ जनाब। कहते हैं महानता कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिर कर उठ जाने में और फिर उस सफ़र को तय करने में, फिर उस मंजिल की ओर बढ़ने में महानता है। जी बिल्कुल श्रोताओं, और इंसान का बुरा वक्त जो है ना श्रोताओं, उसके साहस और धैर्य का पैमाना है। अच्छे वक्त में हर कोई साहसी होता है। अगर कभी आपकी लाइफ में बुरा वक्त, हर किसी की लाइफ में आता है, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की भी लाइफ में बुरा वक्त जो है वो ना आए। हर किसी की लाइफ में बुरा वक्त जो है वो चला होता है, बुरे से बुरा वक्त जो है वो भी लाइफ में श्रोताओं आ जाता है, लेकिन तब साहस और धैर्य का जो है वो पैमाना नापा जाता है, तोला जाता है। अच्छे वक्त में हर कोई साहसी होता है श्रोताओं, लेकिन बुरे वक्त में पता लगता है कि आप कितने साहसी हैं, कितने साहस है आप में, कितना धैर्य है आप में। और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि बुरा वक्त हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तब उसके पास मतलब वो सोच नहीं रहती, उस तरह की समझ नहीं रहती है, उस तरह की शायद ताकत नहीं रहती है सोचने की, लेकिन फिर भी बेहतरीन बने, बेहतरीन बनाएं खुद को। मैं सचिन कपूर हूं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी बने हुए हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं गुड इवनिंग धर्मशाला में। आइए लेके चलते हैं कार्यक्रम में। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलेगा जनाब, जानकारियों का आप पिटारा यूं ही चलेगा। कहते हैं ना कि आदमी मुसाफिर है, और वाकई में ही आदमी मुसाफिर तो है ही, है ना। और चलिए इसी बीच में ये प्यारा सा गीत हम सुनते हैं, उसके बाद बातचीत को बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि आप सभी भी इस समय जो है, हम सभी भी इस समय जो है वो मुसाफिर।

श्रोता FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर है वेडी गुंजन धर्मशाला। आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आज से वेडी, जो कि सचिन कपूर। चलिए, आदमी मुसाफिर तो है ही है श्रोतों, है ना। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक जानकारियों के साथ आप सभी श्रोताओं को रूबरू भी करवाते हैं। श्रोतों, 47 ग्राम सोने के साथ पांचवा आरोपी भी अरेस्ट हुआ है। उपमंडल जयसिंहपुर के तहत श्रोतों एक पंचायत में जो है वो चर्चित चोरी कांड को सुलझाने में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। श्रोतों, क्षेत्र में लगातार सुर्खियों में बने इसी नानी और मामी के आभूषण चोरी मामले में जांच टीम ने जो है वो गिरफ्तार किए गए पांचवें आरोपी की निशानदेही पर चोरी का सोना रिकवर कर लिया है। श्रोतों, इस वारदात को लेकर पुलिस की जो है टीम ने काफ़ी अच्छी मेहनत करके इन्हें पकड़ा है और लगातार ये पांचवा आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिसमें पहले भी चार गिरफ्तार जो है श्रोताओं वो हो चुके हैं। इसी कड़ी में दबोचे गए पांचवें आरोपी रवि कुमार पुत्र चंद्रभान निवासी तलवंडी राणा हिसार से हुई पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने उसके ठिकाने से 47.70 ग्राम मानकों सहित चोरी के आभूषण बरामद किए। इस मामले में पुलिस की जो है वो टीम ने जो है वो इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है श्रोतों, और इसी तरह से जो है वो पुलिस अपना काम बखूबी करती रहेगी श्रोतों। बहरहाल कार्यक्रम को हम भी बखूबी आगे बढ़ाते रहेंगे और लेके चलेंगे आप सभी को इस प्यारे से गीत की, और गीत के बाद श्रोतों बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कहाँ कहाँ नुकसान जो है वो हुआ है श्रोतों, और हमें पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है, प्रकृति जो है वो बार बार सचेत कर रही है, जागरूक कर रही है, लेकिन इंसान फिर भी सोया हुआ है।

शोधा एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजी वीडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है जनाब, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अब आपको लेके चलते हैं श्रोताओं जानकारी की ओर। और हिमाचल में भारी बारिश तो हो रही है जी, बिल्कुल बेशक धर्मशाला में अभी तक जो है वो ये लग रहा है कि सामान्य जैसी बारिश जो है वो हो रही, सामान्य जैसी जैसी बारिश प्रतीत हो रही है, लेकिन हो तो रही है भाई साहब हिमाचल में। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कहाँ क्या हो रहा है। येलो अलर्ट के बीच जो है श्रोताओं, वो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है। बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जनजीवन पर प्रभावित हुआ है। किन्नौर ज़िला की लिप्पा पंचायत के पेजर नाले में जो है वो सुबह आई बाढ़ से जो है वो कहीं ना कहीं तेती खड का बहाव रुक गया। श्रोतों, बाढ़ के कारण लिप्पा गांव को जोड़ने वाला करीब 100 फुट लंबा लोहे का पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया और असुरक्षित हो गया। श्रोतों, पुल के आसपास बने कई घरों पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। श्रोतों, पुल बंद होने से लिप्पा गांव के दूसरे क्षेत्र से संपर्क पूरी तरह से जो है वो टूट गया है। अब देखना ये है कि सरकार उसे कितनी जल्दी जो है वो दूसरे एरिया को जो है वो उस पुल को जो है 100 फुट लंबे पुल को जो है वो कितनी जल्दी जो है वो कनेक्टिविटी दे पाती है और कितनी जल्दी अब वहाँ के लोग जो है वो कनेक्ट हो पाते हैं। ये बहुत बड़ा ये मैं बताना चाहता हूँ। ये वीडियो भी जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। हमारी कहीं वीडियो आपको दिखेगी तो ये बात आपको सच्ची ज़रूर लगेगी श्रोताओं, और जानकारियों का पिटारा जो है वो हम ज़रूर आपके आगे रखते हैं फेसबुक के माध्यम से भी और रेडियो के माध्यम से भी श्रोताओं। और भी इस तरह की और अन्य जानकारियाँ हैं ज़रूर आपसे साझा करेंगे श्रोताओं, बने रहिएगा, जुड़े रहेगा रेडियो गूंज की इसी गूंज के साथ। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को, ये मेरा बहुत पसंदीदा गीत है बहुत ज़्यादा। कुछ गीत होते हैं ना जो आपके दिल में जो है वो बस जाते हैं, आपकी रूह में जो है वो बस जाते हैं। लखविंदर बडाली का ये गीत है लजपाला। मैं लजपाला दे लड़ लगी हैं, मेरे हिस्से गम परे रहना।

श्रोतो एफएम बैंड 91.5 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोतों, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और छोटे से अंतराल का वक्त भी जो है वो हो चुका है।

बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। पुनः बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोताओं का। आइए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, रेडी गुंजन धर्मशाला आप सुन रहे हैं और मैं नाचीस आपका अपना सचिन कपूर। तो शादी में दहेज, शराब और फिजूल खर्चे पर रोक, ये सुनकर आप सभी मतलब वो वर्ग तो खुश ज़रूर हुआ है जो फिजूल खर्चे जैसे जिस तरह से जो भी शादियां हैं किसी भी कल्चर को लेकर आप रख लीजिए, तो आजकल जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड ऑन हो जा रही हैं कल्चर में, है ना। तो ये सामाजिक आयोजनों में लगातार बढ़ रहे खर्चों पर अंकुश लगाने और समाज में अमीर गरीब की समानता सादगी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपमंडल शैलाई क्षेत्र में धारवा गांव की ग्राम सभा ने एक महत्वपूर्ण और सराहनीय निर्णय लिया है, फैसला लिया है। जी बिल्कुल, क्या फैसला है? 6 जुलाई को आयोजित बैठक में गांव के बुज़ुर्ग, महिलाओं और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में जो है वो सर्व सम्मानित और कई सामाजिक नियम लागू किए गए हैं। श्रोतों, ग्रामीण द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार अब शादी विवाह में अनावश्यक दिखावा और फिजूली खर्चे पर रोक रहेगी। विवाह समारोह में के जो है वो सभी प्रकार के नशे व बियर शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। दहेज लेने और देने पर भी रोक लगाने का फैसला जो है, निर्णय जो है वो लिया गया है ताकि समाज में हर वर्ग में समानता और सादगी का संदेश दिया जा सके। निर्णय लिया गया है कि सोने चांदी की आसमान छू रही कीमतों से गहने आम आदमी की पहुंच से जो है वो बाहर होते जा रहे हैं और होने लगे हैं, जाहिर सी बात है। ये देखते हुए शादी में महिलाओं के आभूषणों को भी सीमित किया गया है। अब केवल नाक की तीली, कान के झुमके और गले का मंगलसूत्र पहनाने की अनुमति होगी। ग्रामीणों ने बैठक में स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उद्देश्य किसी पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती आर्थिक समानता और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना है। बारात में 15 वाहन और 100 बाराती, बारात में अधिकतम 15 वाहन और कुल 100 बाराती ही शामिल हो सकेंगे। मामा स्वागत को भी सीमित करते हुए केवल शाकाहारी भोजन और परिवार की समिति सदस्यों की भागीदारी तय की गई है। विवाह में फास्ट फूड पर प्रतिबंध, बहुत बढ़िया फैसला। विवाह में फास्ट फूड पर प्रतिबंध जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला है। आशुतों, नियम तोड़ने पर 50,000 रुपया जुर्माना देना होगा। और बिल्कुल, बैठक में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई परिवार इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 50,000 रुपये का जो है वो आर्थिक जुर्माना किया जाएगा। श्रोताओं, और पूरी पंचायत जो है वो उससे रिश्ता नाता भी तोड़ेगी। साथ ही ऐसे परिवार के शादी विवाह में गांव का कोई भी व्यक्ति जो है वो शामिल नहीं होगा। अब ये फैसला है, ये फैसला आप सभी सुनके हैरान तो हुए होंगे। शैलाई के धारवा गांव में बढ़ते खर्चे पर लगी लगाम। श्रोताओं, ग्राम सभा ने लागू किए सख्त सामाजिक नियम। अब आप सभी को ये नियम कैसे लगे हैं, किस प्रकार के लगे हैं, ये आप पर फैसला है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से समाज में जो है वो समानता रहे और इस तरह से जो है वो समाज में जो है वो समाज एक दूसरे को एक नज़र से देखे, है ना। क्योंकि ये अक्सर होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा खर्च करेगा, है ना, ज़्यादा दिखावा करेगा, जैसे फास्ट फूड को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर, शराब
बियर अन्य चीज़ों को लेकर। तो क्या लगता है ये फैसला, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। फेसबुक के माध्यम से जो लोग हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताइए, क्योंकि ये फैसला शलाई के धारवा गांव ने ठीक लिया है या गलत लिया है। चलिए सो तो हम चलते हैं आगे और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की, और बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।

बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना, श्रोताओं, परदेस जाके परदेसिया भूल ना जाना रे पिया। आप बिल्कुल भूलना तो नहीं चाहिए ना, ना दोस्तों को भूलना चाहिए, ना उस परदेसी को भूलना चाहिए। भूलना तो नहीं चाहिए जी, बिल्कुल। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम का नाम है, और इस समय आप तक हम पहुँचा रहे हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग धर्मशाला, और ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाने लगे हैं श्रोताओं जी, बिल्कुल। हिमाचली गद्दी डॉग को मिली राष्ट्रीय पहचान, इंडियन नेशनल कैनल क्लब में जो है वो स्कूबी और पुटी आधिकारिक पंजीकरण जी। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध स्वदेशी हिमाचली हिमालयन गद्दी शिप गोड नस्ल को बड़ी पहचान मिली है। इंडियन नेशनल केनेल क्लब ने इस नस्ल को दो कुत्तों स्कूबी और पुटी का आधिकारिक पंजीकरण कर दिया है। इसे हिमालय गद्दी नस्ल के संरक्षण और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है श्रोतों। ये पंजीकरण नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स द्वारा हिमालयन गद्दी नस्ल को औपचारिक मान्यता दिए जाने के बाद संभव हुआ है। इसे अब इस स्वदेशी नस्ल को केनेल क्लब की आधिकारिक रजिस्ट्री में स्थान मिल गया है श्रोताओं। डॉक्टर जीसी नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के डॉक्टर पंकज सूद ने कहा है कि यह उपलब्धि कॉलेज के वैज्ञानिकों के लगातार प्रयास का नतीजा है। इस पंजीकरण से भारतीय नस्ल के कुत्तों को लंबे समय से प्रतिष्ठित पहचान जो है वो मिली है श्रोताओं। कार्यक्रम इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला चला हुआ है आपके अपने रेडियो

उस सेट पर। तो त्रमण में जो है वो श्रोताओं बाइक सवार दो युवकों से पकड़ा 1.78 ग्राम चिट्टा। बिल्कुल, ये जानकारी आप तक हम ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं श्रोताओं, और ये जानकारी मैं चाहता हूं कि हमारे जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ते हैं उन तक भी ये जानकारी जो है वो ज़रूर पहुंचे। जी बिल्कुल, ये जानकारी उन तक भी पहुंचे। आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और इस जानकारी को पूरी तरह से जो है वो आपके आगे रखते हैं। तो द्रमण में बाइक सवार दो युवकों से जो है वो पकड़ा 1.78 ग्राम चिट्टा श्रोताओं। जी बिल्कुल, थाना शाहपुर के अंतर्गत पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत द्रमण क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार दो युवकों को पकड़कर उनके कब्जे से जो है वो 1.78 ग्राम चिट्टा हीरोइन बरामद की है श्रोताओं। जी बिल्कुल, ये शाहपुर के अंतर्गत पुलिस ने नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया है उस अभियान के तहत द्रमण क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान ये युवक जो हैं श्रोताओं वो पकड़े गए हैं। और मिली जानकारी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो द्रमण में नियमित जांच के लिए लगाए गए नाके पर एक मोटरसाइकिल को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दोनों युवकों के पास 1.78 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को जो है वो हिरासत में लेकर उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोपी युवकों की पहचान साहिल निवासी गरोह तथा धीरज राणा निवासी सुधेड़ के तौर पर हुई है श्रोताओं। थाना शाहपुर पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाया जा रहा है कि बरामद नशीले पदार्थ कहां से लाए गए थे और कहां लेकर ये जा रहे थे, इसे कहां पहुंचाने की इनकी साजिश थी श्रोताओं। पुलिस ने कहा कि नशे के कारोबार को हम ठप करेंगे, लोगों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। जो लोग नशे में डूबे हुए हैं, जो लोग नशे को अपना कमाई का जरिया जो है वो बना रहे हैं, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है वो इस समय बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल नाकाबंदी पर भी है और बिल्कुल सतर्क भी है। जितने भी नशे के जो भी नशा कर रहे हैं या नशा बेच रहे हैं उन युवकों को मैं कहना चाहता हूं कि आप ईमानदारी की रोटी जो है वो ज़रूर खाएं। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये वाला काम जो है ये सबसे घटिया काम गिना जाता है श्रोताओं। ये काम नहीं है, ये एक तरह से युवाओं को बर्बाद करना है, एक तरह से अपने देश को बर्बाद करना है, एक तरह से खुद को बर्बाद करना है। फैसला आपके हाथ छोड़ते हैं।

91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। आरजे सचिन कपूर के साथ ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चला हुआ है आप सभी के अपने रेडियो सेट पर। बहुत सी जानकारियां जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं श्रोताओं, साथ ही साथ गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी खुल रहा है। तो चलिए ये पिटारा यूँ ही खुलता रहेगा, ये जो रेडियो सेट है आपके घर में ये यूँ ही गूंजता रहेगा, ये मंच यूं ही सजता रहेगा श्रोताओं। और इस रेडियो के माध्यम से हम आप तक नई नई जानकारियां भी पहुंचाएंगे और साथ ही साथ गीत संगीत भी आप तक पहुंचाएंगे। तो श्रोताओं आपसे कुछ ही देर में यानी कि पूरे 7 बजे जो है वो समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें और जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ।

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नजर आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तुतियों में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृतियों, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगम तथा वंदे मातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को पीढ़ियों और महाद्वीपों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने कहा कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रन कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर और। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
3: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
4: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट। टेस्ट। सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सबका कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसकी सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है ये?

श्रोताओं, अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को लेकर चलते हैं और आप सभी को अब रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम में श्रोताओं इस जानकारी के साथ। देशभर सहित प्रदेश में भी बरसात शुरू होते ही पर्यटक नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज में पर्यटकों की चहल पहल कम होने लगी है। समर पर्यटन सीजन के मुकाबले इन दिनों होटलों की ऑक्यूपेंसी में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालात ये हैं कि अब आम दिनों के साथ साथ सप्ताह में पर भी जो है वो होटल अपेक्षित संख्या में नहीं भर रहे हैं। होटल कारोबारियों को अब सितंबर के मध्य से पर्यटकों की आमद बढ़ने की जो है वो उम्मीद है। हालांकि कुछ दिनों तक कई स्थानों पर पर्यटकों को होटल में कमरे तक नहीं मिल पा रहे थे। होटल कारोबारियों के अनुसार वर्तमान में आम दिनों में होटलों की ऑक्यूपेंसी महज 40 से 50 फीसदी रह गई है, जबकि वीकली पर यह 60 से 70 फीसदी तक पहुंच रही है। हालांकि पर्यटन नगरी में पर्यटक अभी भी पहुंच रहे हैं, लेकिन समर सीजन जैसी रौनक पूरी तरह जो है वो गायब हो गई है। श्रोतों, इन दिनों जम्मू कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ से आने वाले पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। उधर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन स्मार्ट सिटी धर्मशाला के अध्यक्ष राहुल धीमान ने बताया कि बारिश शुरू होने के साथ ही होटलों की ऑक्यूपेंसी में कमी आई है। वीकली पर ये 30 से 40 फीसदी और सामान्य दिनों में 10 से 15 फीसदी तक सीमित रह गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सितंबर के मध्य से पर्यटकों की संख्या बढ़ने शुरू होगी और इसके बाद पर्यटन कारोबार फिर रफ्तार पकड़ लेगा। श्रोताओं, तो इसी तरह से जानकारियों का सिलसिला हमारे साथ यूँ ही चलता रहेगा। श्रोताओं, आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ट्यून किया है, आप सभी ने क्या ट्यून किया है, रेडियो गुंजन धर्मशाला, आपका अपना रेडियो गुंजन। तो एक बार फिर से जो है वो सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, ये बात वाकई में थोड़ी सी दुखद ज़रूर है, इवन कि दो दिन, आई थिंक एक दो दिन हो गए हैं, सीज़ फायर जो है वो टूट गया और ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले भी हुए हैं। वापस ईरान ने भी जो है वो हवाई हमले किए हैं, लेकिन इससे अब कहीं ना कहीं फिर से जो है वो तेल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि हॉर्मूज़ पर जो है वो अब फिर से नाकाबंदी जो है वो लग चुकी है ना, और अब फिर से वो चीज़ें, वो तकलीफ़ जो है वो फिर से आएंगी। सिलेंडर फिर से जो है वो गैस नहीं आ रही है, तो फिर से कहीं ना कहीं ये दुख तकलीफ़ जो है वो फिर से हमारे आम जनता के लिए जो है वो एक बार फिर से उत्पन्न हो रही है, होगी आगे होगी। अभी अगर ये लड़ाई बंद नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होगा। श्रोतों, बहरहाल आप सभी सुन रहे हैं वेडी गुंजन धर्मशाला, आरजे सचिन कपूर के साथ ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। तो मॉनसून सीज़न है, और जैसे कि हम सभी बाखूबी जानते हैं कि मॉनसून सीज़न में जो है वो हमारे जो डीसी साहब हैं इमराज बरबा जी, उन्होंने भी मना किया हुआ है, और ये बाखूबी हम सभी जानते हैं कि इस समय जो है वो यात्रा ना करें। कहीं तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी जाएं। श्रोताओं, हमारे जो यहाँ के छोटे छोटे नाले हैं उनकी ओर ना जाएं, खड्डों की ओर ना जाएं, लैंडस्लाइड जहाँ हो रहा है ज़्यादा लगता है हमें, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है ना, लगता है कि इस साइड ज़्यादा लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं, उस साइड ना जाएं। तो इन खास बातों का, इन खास चीज़ों का जो है वो ध्यान रखें। बरसात है तो दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन जो है वो आराम से चलाएं, क्योंकि फिसलने का डर जो है वो 101% रहता है। तो बड़े आराम से जो है वो दो पहिया वाहन को चलाएं, खासकर दो पहिया वाहन के लिए ज़्यादा ख़तरा जो है वो उभर कर आता है। सो दो पहिया वाहन वाले व्यक्ति जो है वो आराम से चलें, और चार पहिया वाहन वाले व्यक्ति भी जो है वो आराम से चलें। सो तो है ना, अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें।

2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और आप सभी सुन रहे हैं समय कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का, सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद भी करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, है ना। अच्छा होना, बेहतरीन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है श्रोताओं लाइफ में। तो आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक खास जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड विद्युत उपमंडल धर्मशाला के सहायक अभियंता रमन भरमोरी ने सूचित किया है कि विद्युत लाइनों के आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते 13 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रातः 9:30 से 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने की स्थिति में ये कार्य अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 जुलाई को स्को बाजार क्षेत्र में, 14 जुलाई को लोअर स्को तथा पुलिस लाइन रोड क्षेत्र में, 15 जुलाई को रेडियो कॉलोनी अपर स्को एवं सुभाष नगर में, 16 जुलाई को चेलियां पीडब्ल्यूडी कॉलोनी तथा आसपास के क्षेत्र में, 17 जुलाई को नई कॉलोनी चेलियां में तथा 18 जुलाई को गुलेर मोहल्ला एवं बलोरिया मोहल्ला में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और लेके चलते हैं श्रोताओं कार्यक्रम में, बढ़ते हैं आपके साथ। और वक्त हुआ है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं श्रोताओं आप सभी से इस अंतराल के बाद।

0: क्या हुआ, ये सब क्या है?
1: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूंगा तो कब करूंगा?
2: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
3: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, हा? आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसकी सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना, मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई। वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

0: श्रोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में मज़े में होंगे। मज़ा ही तो ज़िंदगी का असली मज़ा है श्रोतो। तो मज़े लेते रहिए और वेड़ी गुंजन के साथ यूं ही मिलते रहिए, यूं ही बनते रहिए और यूं ही जुड़ते रहिएगा। तो चलिए जनाब, कार्यक्रम से अभी हम अलविदा तो नहीं लेंगे, अभी समय ज़रूर है अलविदा लेने के लिए, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि बुज़ुर्गों की सेवा ज़रूर करें, माता पिता की सेवा ज़रूर करें, पर्यावरण को सुरक्षित ज़रूर रखें और पर्यावरण को साफ रखने में अपनी भागीदारी जो है वो ज़रूर सुनिश्चित करें। तो 7:45 हो चुके हैं और श्रोतों रेडी गुंजन धर्मशाला में अब वक्त हो चुका है प्रादेशिक समाचारों का।
1: ये आकाशवाणी शिमला है, अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम ने मातृभूमि के प्रति प्रेम को बदला पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य में। प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 17 IAS और 22 HAS अधिकारी किए तब्दील। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में 3,500 करोड़ रुपए से बनेगा आपदा रोधी आधारभूत ढांचा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, मॉनसून की भारी वर्षा को देखते हुए सरकार पूरी तरह अलर्ट। और प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा का दौर जारी, जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम ने मातृभूमि के प्रति प्रेम को एक पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य में बदल दिया है। उपराष्ट्रपति आज शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित वंदे मातरम पर एक स्थायी प्रदर्शनी और सरदार पटेल के अखंडता, एकीकरण और संघीयवाद के दृष्टिकोण पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्र भारत के साझा सपने के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, धर्मों और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नवाचार किसी भी राष्ट्र को समृद्ध बना सकता है, लेकिन महान राष्ट्र की नींव विचारों पर टिकी होती है। सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने न केवल क्षेत्रों को जोड़ा बल्कि भारतीय दिलों को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि देशभक्ति को ईमानदारी, उत्कृष्टता और उद्देश्य की एकता के माध्यम से प्रतिदिन साकार किया जाना चाहिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल केवल भारत के राजनीतिक एकीकरण के शिल्पकार ही नहीं थे, बल्कि भारतीय संघीय व्यवस्था के भी मजबूत समर्थक थे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की एकता और संघवाद की सोच ही देश की शक्ति है। राज्यपाल ने कहा कि भारत का संघीय ढांचा दुनिया में अनोखा है। इसमें अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं संविधान के माध्यम से एक सूत्र में बंधी हुई हैं, जो देश की एकता की नींव है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा रहा है। प्रदेश सरकार ने आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस फेरबदल में सरकार ने 17 IAS और 22 HAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी ओंकार शर्मा को मौजूदा दायित्वों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी M सुधा देवी को प्रधान सचिव स्वास्थ्य के पद से हटाकर प्रधान सचिव वन व उद्योग के पद पर तैनाती दी है। वरिष्ठ HAS अधिकारी ज्ञान सागर नेगी को शिमला में ADM प्रोटोकॉल लगाया गया है, जबकि नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री को तब्दील कर सामान्य उद्योग निगम में प्रबंध निदेशक के रूप में तैनाती दी गई है। सचिन कंवल को शिमला नगर निगम का आयुक्त तैनात किया गया है। शिमला की ADM प्रोटोकॉल ज्योति राणा को प्रदेश विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और राज्य को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए लगभग 3,500 करोड़ की लागत से आपदा रोधी आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज शिमला के हिप्पा में हिमालय क्षेत्र में आपदा रोधी ढांचे की योजना को लेकर आयोजित एक कार्यशाला के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2023 की आपदा से मिले अनुभवों के कारण सरकार वर्ष 2025 की आपदा का बेहतर तरीके से सामना कर सकी। इससे स्थिति गंभीर होने के बावजूद अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिना बजट के एक और योजना सुखी परिवार शुरू करने जा रही है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि सरकार हर साल समाज कल्याण का बजट कम कर रही है, ऐसे में बिना बजट के नई योजनाएं कैसे चलेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पूर्व भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई जनहित की योजनाओं को बजट रोककर बंद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत जंगल रोपा के गांव कुशवाड़ का दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने सुनील शर्मा बिट्टू के समक्ष फोरलेन सड़क से गांव घनोटला तक सड़क खराब होने की समस्या उठाई और इसकी तुरंत मरम्मत करवाने की मांग की। गांववासियों ने पशु औषधालय खोलने, हमीरपुर से मसियाणा चौक तक बस सेवाएं आरंभ करने सहित कई अन्य मांगे भी रखी। सुनील शर्मा बिट्टू ने लोगों की ओर से उठाई गई सभी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमीरपुर से मसियाणा चौक तक बस सेवा आरंभ करने, पशु औषधालय खोलने व अन्य सभी मांगों को वे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के समक्ष रखेंगे और इन्हें पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार त्वरित कदम उठाए जाएंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सरकार प्रदेश में हो रही मॉनसून की भारी वर्षा को देखते हुए अलर्ट है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने मॉनसून की भारी वर्षा को देखते हुए सभी जिला उपायुक्तों को स्कूलों को खुले रखने या बंद करने का फैसला लेने की शक्तियां दे दी हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज सोलन और सिरमौर जिला में स्कूल बंद रखे गए।
2: तो हमने एक तरह का निर्णय लोकल स्तर पर लेने की बात कही थी और इस तरह की दिशा निर्देश हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे सभी जिलाधीशों को पहले भी दिए गए हैं और आज सारी बातों का मूल्यांकन करते हुए मैंने सुबह भी सचिव शिक्षा को कहा है कि पुनः सभी डीसी को इस बारे में एडवाइस दी जाए, जहाँ पर भी आपका रेड अलर्ट है, आपका ऑरेंज अलर्ट है, वो अपने स्तर पर निर्णय ले और वहाँ पर छुट्टी घोषित करें।
1: चंबा जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आज संपन्न हो गया। आज हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रेखा देवी अध्यक्ष और लियाकत खान उपाध्यक्ष चुने गए। चुनाव में जिला के सभी 18 निर्वाचित सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस समर्थित दोनों उम्मीदवारों को 10-10 वोट हासिल हुए, जबकि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों मीनाक्षी कपूर और सुनील शर्मा को 8-8 वोट पड़े। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस मौके पर कहा कि उन्हें पहले से ही कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत का भरोसा था, क्योंकि जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री सड़कों, पानी और आधुनिक निर्माणों के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज दुर्भाग्य से हिमाचल को FIR वाले मुख्यमंत्री मिले हैं। आज हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था, झूठे मुकदमों और निर्दोष लोगों को डराने धमकाने वाली प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर भाजपा जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करवाएगी।
3: हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये हो गई कि जगह जगह कत्ल हो रहे हैं, जगह जगह लोगों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं, कुल्हाड़ियों से हमले हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। शिमला में कांड हो गया, बिलासपुर में कांड हो गया, ऊना में कांड हो गए, हमीरपुर में कांड हो गए, सरका घाट में कांड हो गया, कुल्लू में लोग सड़कों पर हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ऑर्डर एंड लॉ हो गया। इसका मतलब है कि ऑर्डर देके लॉ को आगे किया जा रहा है। जो भी कोई व्यक्ति सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहा है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। जल्दी भारतीय जनता पार्टी सारा काला चिट्ठा इकट्ठा करके केंद्र में माननीय गृह मंत्री से मिलेंगे और इस सरकार का काला चिट्ठा भी पेश करेंगे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का लाहौल स्पीति का कल 11 जुलाई को प्रस्तावित दौरा खराब मौसम के कारण रद्द हो गया है। नड्डा को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज कुल्लू पहुंचना था और 11 जुलाई को लाहौल स्पीति का दौरा करना था, लेकिन प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के कारण उनका ये दौरा अब रद्द हो गया है। नड्डा केलांग में ICMR के उच्च हिमालयी चिकित्सा व जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करने वाले थे। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की व्यापक से भारी वर्षा हो रही है। प्रदेश में हो रही मॉनसून की इस वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के चलते सोलन और सिरमौर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान व आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहे। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज 158 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके चलते शहर में कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिस कारण 7 मकानों को खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने इन मकानों को खाली करवा दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला जिलों में भारी

0: का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सिरमौर और सोलन जिलों के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम ने मातृभूमि के प्रति प्रेम को बदला पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य में। प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 17 आईएएस और 22 एचएएस अधिकारी किए तब्दील। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में 3,500 करोड़ रुपए से बनेगा आपदारोधी आधारभूत ढांचा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, मानसून की भारी वर्षा को देखते हुए सरकार पूरी तरह अलर्ट। और प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा का दौर जारी, जनजीवन प्रभावित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: श्रोताओं, समाचारों के बाद आप सभी का मैं सचिन कपूर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, अब 8 बजने वाले हैं और अब कार्यक्रम से अलविदा लेने का समय जो है वो हो चुका है। तो जाते जाते बस यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आरजे सचिन कपूर को यूं ही वेड़ी गुंजन में सुनते रहिए और सुनाते रहिए। चलिए लेते हैं आप सभी से अब अलविदा, मिलते हैं कल। नमस्ते धर्मशाला।
2: लेटेस्ट अपडेट्स की

0: करण कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें।
2: थोड़ी देर हो गई। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे
3: तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ।
2: अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
4: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
5: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट
1: सर, टेस्ट ड्राइव।
2: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
3: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
4: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा है? आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी हैं, वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, हैं? वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

0: रन कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें।
2: थोड़ी देर हो गई। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे
3: तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ।
2: अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
4: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
5: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट
1: सर, टेस्ट ड्राइव।
0: टेस्ट।
2: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
3: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
4: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, अब खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसकी सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना, मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई। वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती थी, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: सलन कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर और। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब

0: कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
1: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
2: जिस साल बरसात अच्छी होती है, खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती, उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट।
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लूँ।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
0: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सबका कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, अब खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसकी सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना, मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई। वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।